जा बुरा करते हाथ, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Murga, murga. Na virtuala murga.
1: Mirchi, murga. हेलो
2: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
1: बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी भाई संतोष, यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको थाना आना पड़ेगा।
1: क्यों?
2: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
1: गए थे जी।
2: आपने धरने पे बैठे थे? आप
1: जी बैठे थे।
2: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी तीन लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
1: हाँ बताओ। जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
2: जस्टिस? कैसा जस्टिस भाई, कैसा? मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
1: जी जी गए थे जी।
2: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
1: जी जी।
2: आपके पड़ी लाठी कोई?
1: मेरे तो नहीं पड़ी।
2: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार, तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
1: सर आप नाराज क्यों?
2: नहीं नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ।
1: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था, बहुत दूर था लाठी।
2: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई? बहुत दूर
1: था, बहुत दूर था
2: भाई। इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
1: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
2: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, तीन लाठी रजिस्टर पे चलाइए, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
1: सर नाराज क्यों है?
2: नहीं
1: तो
2: नाराजगी की तो बात है,
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
2: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, तीन लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई।
1: सर मैं आ जाऊंगा
2: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं? मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। ये बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था, उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है,
1: वो
2: बहुत दूर था, नाराज वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ।
3: संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: वेल अरिजीत सिंह और शाल मलिक होलगड़ की आवाज में ये गाना राइट अराउंड मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ, आपकी सुबह वाली आदत। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत है आपका राइट अराउंड द शो मिर्ची मॉर्निंग। और आज की सुबह ना मुझे अंदर से ही ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाली फीलिंग दे रही है। ऐसे किस दिन होता है ना कि कभी कभार आप बहुत थक कर उठते हो, कभी कभार आप एकदम ऐसे उठते हो ऐसे जोश के साथ कि यस वी आर रेडी टू टेक इट ऑन ब्रिंग इट ऑन, जिस तरह से वो एक एनर्जी होती है ना। तो मेरे ख्याल में आज मेरे अंदर ऐसी एनर्जी है एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि ये मैं एनर्जी ना ये रेडियो वेव्स के थ्रू आपकी तरफ जरूर पहुंचाओगी। अब भले ही हमारा मौसम साथ दे या ना दे, भाई ये एनर्जी काफी आज का दिन अच्छा रहने के लिए।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। आज तापमान का कहना ये है मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल जो महसूस कर रहे हो आप वो 30 डिग्री सेल्सियस पर है और ह्यूमिडिटी कम ही है एक्चुअली 33% पर है। हवाएं भी हल्की फुल्की सी चल रही है 11 किलोमीटर पर आवर पर। ऑल इन ऑल यही कहना चाहूंगी भाई, बड़ा जबरदस्त सा तो नहीं कह सकती हूँ लेकिन बड़ा बेरेबल बेरेबल वाला बहुत अच्छा सा ही है एक्चुअली कह सकते हैं, क्योंकि शाम के वक्त ना जो हवाएं चलती है और उस वक्त पर वॉक करने का इतना मजा आता है ना अभी भी। So make the full use of it और बस अच्छे वही कहा ना मैंने जबरदस्त वाली एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। Right here माइक से दिल तक आप ड्रीम के साथ बने रहेगा मिर्ची हॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। For bright future call now 3100 0813।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
2: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उस पे खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
1: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। खट खट,
3: कौन है?
0: ईशांत।
3: ईशांत कौन?
0: ईशांत गदाधारी भीम, ईशांत।
3: खट खट, हू दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: गुरु की आवाज में ये गाना राइट रन मिर्ची, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और ये जेन जी का जो नशा है, वैसे गुरु तो मिलेनियल के कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, लेकिन करण औजला को तो हम जेन जी कहेंगे ना, राइट। अगला गाना बॉयफ्रेंड, मोस्ट ट्रेंडिंग वायरल ट्रैक ऑफ द सीजन, प्लेइंग नेक्स्ट फॉर यू राइट रन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

करण औजला की आवाज और आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। वे गुड मॉर्निंग दोहा, मैं हूँ आफरीन और बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में GCC के जो बहुत ही तेजी से अब स्पीड पकड़ रहा है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट GCC रेलवे प्रोजेक्ट का कम्प्लीशन। वो अब हो चुका है 50% के से ज्यादा। ये वही रेलवे प्रोजेक्ट है जो GCC के कंट्रीज को ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करने वाली है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये भी है दैट 2030 तक ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये ऑपरेशनल हो सकता है। मतलब एक इंटीग्रेटेड ट्रेन सिस्टम विच इज गोइंग टू कनेक्ट ऑल दीज कंट्रीज अराउंड कतर, जैसे सऊदी, दुबई, बहरीन एंड ऑल दीज कंट्रीज। वेल बता दो, ये पूरा जो नेटवर्क है ना, ये 1700 किलोमीटर का नेटवर्क है। And you know, this is not just an infrastructure project, this is a long-term regional transformation as well. Aaj Qatar already metro connectivity mein apna ek बेंचमार्क जो है वो सेट कर चुका है। क्लीन स्टेशंस, पंक्चुअल टाइमिंग्स, वर्ल्ड क्लास सिस्टम और अब सोचिए उसी एफिशिएंसी का स्केल अब और भी बढ़ गया है। वेल प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ पैसेंजर ट्रैवल नहीं, कार्गो मूवमेंट भी है। मतलब ट्रक्स पे डिपेंडेंसी कम होगी, लॉजिस्टिक्स स्मार्टर होंगे, रोड मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बेटर होगा। बेसिकली लेस ट्रैफिक स्ट्रेस, मोर सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड दैट्स व्हाट रियल फ्यूचर डेवलपमेंट इज। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि वो दिन भी जरूर आएगा जब हम वीकेंड के प्लान्स ट्रेन से किया करेंगे रादर देन लॉन्ग ड्राइव्स। कुड इट बी लॉन्ग ट्रेन राइड्स। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। जरा अगला गाना जो बजा रही हो ना वो तो फुल वॉल्यूम पर सुनो, 90s नॉस्टैल्जिया का है, सोनू निगम की आवाज एंड कहीं से भी इसमें 90s का तड़का नहीं लग रहा है। By the way, do you remember the actress in this song? If yes, tell me 5000 1896 पर। ये दिल है अकेला। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
2: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं सुबह के साथ और आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स इट्स हॉट
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

टेशर और जसन देओल की आवाज में ये गाना जलेबी बेबी। और जलेबी बेबी सुनते ही मुझे फिलहाल भूख लगने लगी है, ना मेरी सुबह की कॉफी कुछ हुई है, वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ ऐसे, ना मेरा नाश्ता हुआ है। वेल, आपका क्या सीन है? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जहाँ खाने पीने की बात हो रही है भाई, पीने से याद है कि पानी पीते रहो, क्योंकि जिस तरह से अब वेदर होते जाएगा ना कि हम गर्मी के दिनों की तरफ आ रहे हैं, और जो कतर में पिछले कुछ सालों से रहते हैं दे नो द ट्रेंड है ना कि ये ड्रिल है, इस तरह से पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। और ये हाइड्रेशन का जो गेम है इट्स ऑल द ईयर राउंड, ठीक है, इट्स नॉट ओनली फॉर गर्मी। लेकिन अब इस बार क्या कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ये भी कह रहा है ना कि जो सीजनल अल बवारी विंड्स होती हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है, और ये टिपिकली जो है मई में शुरू होती है। और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा पिछले कुछ दिन कि यार शाम के वक्त, इनफैक्ट दोपहर से शाम तक ना हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से थोड़े से डस्टी कंडीशंस तो आते ही है, जाहिर सी बात है हम डेसर्ट में रहते हैं, और उसी वजह से जब रेत उड़ती है, रिड्यूस विजिबिलिटी होती है, ह्यूमिडिटी भी लो हो जाती है, दैट इज़ आई थिंक सो अ गुड थिंग कि चलो पसीने नहीं आते इस हवाओं की वजह से, और सी वेव्स जो है वो रफ हो जाती है। अब ये जो पूरा सिलसिला है ये चलते रहेगा अंटिल जुलाई, और फिर मेरे ख्याल से जुलाई के बाद पसीने भी निकलेंगे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, तो मेरे ख्याल में जब तक कि ये हवाएं चल रही हैं जो अल बवारी विंड्स है उसकी वजह से शायद बेहतर रहेगा, हमें इतनी ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा बाहर। लेकिन इन सभी के बीच ये जरूर कहना चाहूंगी उन लोगों से जो एलर्जिक है, जिन्हें डस्ट से एलर्जी होती है, सो ऐसे वक्त में अगर बाहर बहुत वक्त तक आप मॉर्निंग्स में रहने वाले हो बाहर, सो बेहतर है कि आप मास्क पहन लें और अपना ख्याल रखें। और फिलहाल के लिए तो आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, माइक से दिल तक, क्योंकि हनी सिंह की आवाज़ में अगला गाना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
3: गुड इवनिंग
4: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
3: ओके
4: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
3: टू टू जा फोर.
4: वेट सर, वेट.
3: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
4: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
3: डर जाएगी.
4: गुड सर, वेरी गुड सर.
3: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
4: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
3: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
4: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
3: पूछो यार.
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
3: पूरे 100.
4: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण मावई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
3: जेल में जाना पड़ेगा.
4: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
3: समझा नहीं मैं.
4: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
6: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
7: यार तुझे पता है, चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की AI रेप्लिका बना रहे हैं.
8: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे. हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं.
5: मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका, आफरीन के साथ हो। और दोस्तों, हज का सीजन शुरू हो चुका है और इस बीच में लोग अक्सर बहुत पहले से शॉपिंग शुरू करते हैं अपने बेहद जरूरी चीजों की। लेकिन यहाँ पर हज में असली प्रिपरेशन सिर्फ सूटकेस तक लिमिटेड नहीं है, इट ऑल्सो इज अबाउट योर सोल एंड स्टैमिना। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस साल ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनली फील हो रही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आप सिंपली आफरीन को। कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने पिलग्रिम्स के लिए हज के इम्पॉर्टेंट हेल्थ गाइडलाइंस रिलीज की है, जहां उन्होंने कहा है कि हज पे जाने से पहले बॉडी को प्रिपेयर करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आप दिल को प्रिपेयर करते हैं। वेल, जाने से पहले डेली वॉकिंग स्टार्ट कीजिए, 8,000 से 10,000 तक के स्टेप्स तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हज इबादत ही नहीं, इनफैक्ट इट्स ऑल अबाउट एंड्योरेंस, पेशेंस एंड डिसिप्लिन एज वेल। वेल, ये एक सिर्फ जनरल एडवाइजरी नहीं है दोस्तों, दिस इज एक्चुअली वेरी प्रैग्मेटिक एंड फार साइटेड प्लानिंग। एंड देखिए, यूजली लोग बहुत शॉपिंग करते हैं अबाउट हज, एहराम, स्लीपर्स, पावर बैंक, तस्बी, बट मिनिस्ट्री कह रही है दैट मेडिकल रेडीनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। यस, बैलेंस डाइट रखना, शुगरी और ऑयली फूड कम करना, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, एस्पेशली यू नो द हीट आउट हियर, तो उसमें हमें उसमें एंड्योर करना है, उस वजह से हाइड्रेशन हैज टू बी रियली रियली गुड। एक इंटरेस्टिंग वैल्यू एडिशन यहाँ पर यह है दैट डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड भी रिकमेंड करते हैं कि हज पे जाने से पहले वॉकिंग प्रैक्टिस एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसे आप वहाँ पर एयरपोर्ट पर तवाफ के वक्त वॉक करेंगे। मतलब नॉट द ट्रेडमिल वाली वॉकिंग, द एक्चुअल आउटसाइड बाहर निकल कर वो वाली वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। सीनियर सिटीजन्स, क्रॉनिक कंडीशंस वाले, इन लोगों का डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशंस लेना, इनफैक्ट डेंटल कंसल्टेशन, डेंटल चेकअप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने ये जारी किया है। सो बस यही दुआ करूंगी और यही उम्मीद करूंगी कि आपका हज का सफ़र जो है वो बिल्कुल आसान हो, और आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और इस साल अगर कोई हज पर जा रहा है तो मुझे मैसेज करिए, ज़रूर बताइए। यहाँ पर 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर। मीनवाइल आपका इंतज़ार है यहाँ पर, विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक, सो बने रहेगा मेरे साथ माइक से लिल तक आफरीन के साथ। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: फिलहाल तो वो वक्त हो चला है जहाँ पर हमको तुमको सवाल बताना है। आप रेडी हो कि नहीं? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का टाइम हो चुका है जहां पर मैं सीन सुनाने वाली हूँ। आपको गेस करना है कि आखिर ये कौन सी मूवी से सीन है। ठीक है, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से आज का सीन सुनो।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन
2: टेस्ट। शादी की पड़ी है तेरे को? आज की हेडलाइन, रंजार में तबाही, रजाड़ी घरों और दुकानों की तोड़ फोड़, बवाल काबू से बाहर। कर मत कर, नुकसान सिर्फ रजाड़ियों का हो रहा है।
3: नुकसान रजाड़ी का हो या सनेड़ा का, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। फर्क होता तो तेरे साथ नहीं आती, वो भी वाक को गैला छोड़कर आसान नहीं है मेरे लिए।
2: आसान मेरे लिए भी नहीं है लीला, मैं भी अपने घर वालों को ऐसी हालत में छोड़ के आऊं।
0: ऑलराइट ऑलराइट, हीटेड आर्गुमेंट। कौन सी मूवी से है ये जो भी मूवी से है, इस मूवी में जो किरदार है, ये दो जो मेन प्रोटैगनिस्ट जो है प्रोटैगनिस्ट, इसमें इनकी केमिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है इनकी सारी मूवीज़ में से। अब मैं जनरली क्या करती हूँ ना, मैं फ्लो फ्लो में बहुत सारी चीज़ें बोल देती हूँ। अब मैं यहीं पर अब काबू कर लेती हूँ अपने आप को और आप बताइए कौन सी मूवी है ये। 5000 1896 इज़ माई नंबर ईयर। एंड इतना भी बता दूँ चलो कि ये जो मूवी है, दे आर नॉट ओनली रियल लाइफ कपल बट दे आर ऑल्सो रियल लाइफ कपल। बता दिया ना, बस है। 5000 1896 काफी सारे आंसर्स इधर आ रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, जितने आंसर्स आ रहे हैं देख तो रही हूँ कि सारे सही ही लग रहे हैं फिलहाल तो। लेट मी गो एंड रिप्लाई टू देम। तब तक के लिए आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा बादशाह की आवाज में। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
3: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
2: शाहरुख खान इतना चार्म कहां से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: यार बजट ही नहीं बन रहा है, प्राइसेस देखे, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
1: मैंने बोला था ना मई 12th का वेट कर।
0: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
1: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th to 18th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
0: किलर ऑफर्स। मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
1: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
2: खट खट।
3: Who that?
2: जाहिर।
3: जाहिर? जाहिर हूँ।
2: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
3: खट खट। Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और इट्स टाइम कि हम अब बॉलीवुड का कॉन्टेस्ट करें। वेल, सवाल पूछा था हमने यहाँ पर और जवाब का इंतज़ार कर रही थी मैं कि यार कितने लोगों ने यहाँ पर मैसेज किया है। सवाल बहुत आसान था, मैंने हिंट्स भी दिए थे। लेट्स हियर दैट फर्स्ट।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट सीन टेस्ट।
2: अपने घर वालों को ऐसी हालत में छोड़ के आओ, पर तुझसे पब्लिक सोच
3: हर बात में काटने को क्यों दौड़ रहा है? मैं तो सब कुछ भूल के तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रही हूँ।
1: ये डायलॉग, ये मूवी, क्या एक्टिंग की थी भाई। फॉर सम रीजन आई थॉट दैट दिस मूवी डिडंट वर्क आउट दैट वेल, बट इट डिजर्व्ड इट आई थिंक सो। दीपिका पादुकोण है इसमें, रणवीर सिंह है इसमें, एज आई सेड रियल लाइफ कपल दोनों है। और कौन सी मूवी है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। लेट मी हियर आउट, रीड आउट द नेम हियर। चेन्नई एक्सप्रेस नहीं है ये रोहित, दिस इज आशिफ, बिल्कुल सही बताया है तुमने। खनक, द आंसर इज राइट। शहला ने भी बिल्कुल सही बताया है यहाँ पर। देन आई हैव हियर, जिन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है, मैं उनके मैसेज आज नहीं प्ले कर पा रही हूँ। संजू ने सही बताया है। देन I have Kartik here, then I also have your, क्या नाम है इनका, मनाली, and so many more कहते हुए कि आफरीन this is रामलीला। Yes, जहां राम का किरदार रणवीर सिंह ने किया था, लीला का किरदार दीपिका पादुकोण ने किया था। एंड इट सीम्स जो इनके रिलेशनशिप की जो स्पार्क्स हैं वो इसी मूवी के साथ में शुरू हुई थी। एंड यू नो वॉट, बिफोर द मैरिज इन्होंने जितनी भी पिक्चर्स साथ में की ना, अगर आप देखोगे एक ट्रेंड, भले ही वो रामलीला हो, भले ही वो पद्मावत हो, देन और कौन सी मूवी थी, जितनी मूवीज इनकी थी, दे डिड नॉट कम टुगेदर, मतलब दे डिड नॉट हैव अ हैप्पी वाला एंडिंग। एंड when they came as husband wife after their marriage in a movie, and that was a Kapil movie, jo 83 movie thi jisme Kapil ka kirdar play kiya tha, right? So Deepika and Ranveer, who Deepika who is expecting again now, and I just love this power packed couple. Filhal ke liye to agla gana jo suna rahi hu main yahan par Shreya Ghoshal ki awaaz mein, Usman Meer ka saath, from the same movie Goliyo ki Ras Leela, Ram Leela se नगाड़ा संग ढोल बाजे और मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है, ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया ये।
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

तो दोस्तों कतर का फेवरेट मार्केट इज बैक, लेकिन दिस टाइम ऑन अ ब्रिज। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द तोरबा मार्केट। वेल, तोरबा मार्केट अगर आप गए हो पहले, तो वहाँ पर ना बहुत फ्रेश प्रोड्यूस मिलते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, एंड इट हैज अ लवली वाइब। वेल, तोरबा मार्केट इज बैक एंड दिस टाइम इट इज ऑन द ब्रिज। अब कहाँ पर भाई, इतने खूबसूरत ब्रिज और वो वेनिस वाली फीलिंग कतर में एक ही जगह पर तो है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कनत कारतियर द पर्ल आइलैंड। यहाँ पर 16 में ऑनवर्ड्स ये जो है तोरबा मार्केट ये शुरू होने वाला है, एंड एंट्री एब्सोल्युटली फ्री एज ऑलवेज, 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है। एंड एज आई सेड इट्स फ्री फॉर ऑल। अब जो वेदर है शाम के वक्त वो भी साथ दे रहा है, सो वीकेंड का कोई प्लान है कनत कारतियर पर तो ऐसे ही कोई खास बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट गो ऑन अ ड्राइव देयर या फिर वहीं पर कैफेज के पास बैठना, लेकिन दिस टाइम यू हैव अ रीजन टू विजिट तोरबा मार्केट इज द रीजन, और बहुत अच्छी वाइब्स मिलती है यार कनत में। सो वेल, दिस कुड बी और वीकेंड प्लान, फिलहाल के लिए तो प्लान ही होना चाहिए कि अगला गाना यहाँ पर सुने आफरीन के साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Well, right kind of energy required exactly in the middle of this week. Yani 12th of May, Tuesday है, हफ्ते के बीचों बीच है हम और ये energy हमें यहाँ पर दे दी है. लव जंजुआ सोनू कक्कड़ नेहा कक्कड़ ने right here on the show Mirchi Mornings. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और ये जो गुड मॉर्निंग का जो मेरी अरमान हमेशा जैसे मैं कहती हूँ ये विद्या बालन से आई है और मुझे सच में लगता है कि ये ट्रूली वर्क्स है ना. मतलब आप अगर सोते सोते भी जा रहे हैं ना तो ये आपको बिल्कुल जगा देगा. फिलहाल तो ये एक्सचेंज रेट है जो आपको जगाने वाले है. देखिए आज आई पी के एक्सचेंज रेट कुछ ये कह रहे हैं कि राड ₹1 के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.18. वही जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 37.11. बांग्लादेशी टाका की बात करें तो बड़ा ही कंसिस्टेंट काफी दिनों से 33.67 पर है. वहीं श्रीलंकन रुपीज भी कंसिस्टेंटली 88.36 पर है और नेपाली रुपीज ऑल टाइम हाईएस्ट पर 41.71 पर. राइट हियर आप सुन रहे हो आफरीन को. घर भेजे पैसे ढेरों सारी खुशियां और माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

गाओ हरे ला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो

0: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। एम के आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अल वक्रा, अल जनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424। एम के आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
1: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
3: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
3: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
6: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
8: Arjit Singh ki awaaz aur ye khubsurat sa gana. You gotta stay tuned because turan baad sawaal lekar aa rahi hai aapke non-Mirchi's heart.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ और आपको हारते बिल्कुल नहीं देने वाली है फिलहाल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। लेकर आ गई है आफरीन इसका उल्टा पुल्टा जबरदस्त तरीके से मूवी की एक्सप्लेनेशन, जहां पर आपने गेस करना है कि आखिर आफरीन कौन सी मूवी की कहानी बता रही है आज। सो कहानी कुछ ऐसी है आज की जो सीधा आपको 2004 में लेकर जाएगी। ये 2004 की ये मूवी है। थोड़े से हिंट्स यहाँ वहाँ पहले दे देती हूँ। एक मल्टी स्टारर मूवी है, सदी के महानायक है। अब जो कहानी बता रही हूँ अब आप सुन के रिलेट करो कि कौन सी मूवी है, ठीक है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है जो रिटायरमेंट के करीब है, हेल्थ इश्यूज भी है और डिपार्टमेंट में लोग उसे ऑलमोस्ट आउटडेटेड समझते हैं। तब सडनली उसे एक ऐसा इम्पॉसिबल लुकिंग मिशन मिलता है कि एक डेंजरस टेररिस्ट को सेफली ट्रांसफर करने का। अब मिशन के लिए एक स्मॉल पुलिस की टीम भी बनती है। टीम में एक हॉट हेडेड एनकाउंटर टाइप कॉप होता है, एक यंग ऑफिसर होता है, कुछ लोग होते हैं जिन पर ट्रस्ट करना भी थोड़ा सा रिस्की लगता है, लेकिन इन सब के बीच इनके साथ एक साथ में जुड़ जाती है मिस्चीवियस लड़की और उनके इस सफर का बन जाती है। कभी कभार हेल्पलेस लगती है और कभी कभार सस्पिशियस लगती है। ये पूरी जर्नी है जहां पर कॉप्स वर्सेस क्रिमिनल होते हैं, लॉयल्टी, करप्शन, सैक्रिफाइस और वो ऑफिसर्स जो इम्परफेक्ट होने के बावजूद भी ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं, और कुछ धोखे भी होते हैं इस मूवी में। कौन सी मूवी है ये यहाँ पर बताइए मुझे। 5000 1896 मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं एंड क्या बात है, नॉट एन ईजी मूवी टूडे लेट मी टेल यू। और अगर आप गेस कर रहे हो यहाँ पर जैसे जाहिर मोहम्मद यूसुफ खान, इन्होंने गेस किया है, बिल्कुल सही किया है यार, क्या बात है, मानना पड़ेगा दोस्त आपको। ठीक है मैं आती हूँ वापस थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए अगर नहीं सोच पाए हो तो सोचो सोचो सोचो इस मूवी ने ऐसा जादू डाला था कि भाई यू जस्ट कुडंट स्टॉप वॉचिंग इट। वेरी ग्रिपिंग मूवी, ठीक है। विशाल ददलानी की आवाज में। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं आपके लिए आफरीन आपका स्वैग से स्वागत करना चाहेगी ऑन द चीज हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bordai.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय देवगन, फर्ज करते हैं आप माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर्स केआरके, देयर्स करण जौहर एंड देयर्स काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
3: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
2: Because that's the game. आपको दो लोगों को तो बचाने ही पड़े.
3: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
2: ऐसा ही हूँ मैं.
3: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
2: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट. बॉलीवुड बोल डाल,
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: खट खट
1: हू देयर
0: बनता
1: बनता हूँ
2: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को
1: खट खट हू देयर
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: सुज़ैन दिमलो की आवाज, आवारापन का ये गाना, व्हाट अ सॉन्ग ना. मतलब ये गाना हम आप 10 साल बाद भी सुनेंगे ना तो बिल्कुल फ्रेश लगेगा. मैं हूँ आफरीन और मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत करती हूँ आपका.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
0: और यहाँ पर हम गेम खेल रहे थे और मुझे लगा था आपको आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा, लेकिन आप लोग तो यार बड़े स्मार्ट निकले. मूवी की कहानी सुनाई थी मैंने आपको, आपने गेस करना था आखिर ये मूवी है कौन सी. सो चलिए सीधा आई डाइव इनटू द कहानी फर्स्ट. सो हियर इट गोज. ऑल राइट, कहानी कुछ ऐसी है दैट एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है जो रिटायरमेंट के करीब है, हेल्थ इश्यूज भी है और डिपार्टमेंट में उसके लोग उसे ऑलमोस्ट आउटडेटेड समझते हैं. तब सडनली उसे एक ऐसा मिशन लगता है मिलता है विच इज लाइक इम्पॉसिबल, एक डेंजरस टेररिस्ट को ट्रांसफर करने का. अब ये मिशन के लिए एक छोटी सी पुलिस ऑफिसर की वो टीम भी बनाई जाती है. टीम में एक हॉट हेडेड एनकाउंटर टाइप कॉप रहता है, एक यंग ऑफिसर रहता है और कुछ लोग होते हैं जिन पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा रिस्की लगता है. अब साथ में जुड़ जाती है एक मिस्चीवियस टाइप की लड़की जो कभी हेल्पलेस लगती है तो कभी सस्पिशियस. पूरे इसमें बहुत सारे सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है और फिर अटैक्स होते हैं, धोखा मिलता है बहुत बड़ा वाला. और दिस मूवी इज ऑल अबाउट कॉप्स वर्सेस क्रिमिनल. कौन सी मूवी है ये, चलिए सुनते हैं हमारे लिसनर्स से राइट हियर.
2: हेलो, माय नेम इज अशोक.
0: हां अशोक,
2: एंड द मूवी नेम इज खाकी.
0: ऑल राइट,
3: हाय आफरीन.
0: हाय,
3: गुड मॉर्निंग. माय नेम इज सुनील कुमार एंड द मूवी नेम इज खाकी.
0: दैट इज राइट यार सुनील, साथ में खयाम अख्तर, जाहिद, मोहम्मद यूसुफ खान, इन सभी का भी बिल्कुल सही जवाब आया है और ताहिर का भी मैसेज आया है. सो इट इज इंडीड खाकी. और खाकी के बारे में मैं बताऊं तो बड़े ही जबरदस्त स्टारकास्ट था इसका. अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय, तुषार कपूर and so many more. लेकिन गाने ना इसमें बहुत ही यादगार गाने थे. And I'm giving you the options again. गाना number one, क्या सुनना चाहोगे? क्या आपको दिल डूबा सुनना है? I like this गाना यार. या गाना number two. Hi. I know the choice is very difficult. या गाना number three. That is, you know it. All right, 5000186 is my WhatsApp number. Gana number one is Dil Duba. Gana number two is Vada Raha. And Gana number three is Aisa Jadoo. So, यहाँ पे numbers आए हैं यहाँ पर. And I think so, you and me are on the same track. यानी आपको सुनना है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये वाला गाना जो कि मेरा भी फेवरेट है. So, here it is. फुल वॉल्यूम पे सुनो आप माइक से दूर तक आफरीन के साथ अनवर्चित साथ.

0: हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
3: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपका स्वागत है. आफरीन के साथ हो आप और राइट ईयर मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:01 की तरफ और शरारत भरा गाना आपका इंतजार कर रहा है मधुबंती बागची और जास्मिन संदर्स की आवाज में और मिर्ची इट्स हॉट
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

ओके दोस्तों, कुछ कंट्रीज आपको फाइनेंशियल सुकून देती है एंड कतर सीम्स टू बी वन ऑफ देम. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और आज ये बताना चाहूंगी आपको दैट कतर को ऑफिशियली रैंक किया गया है वर्ल्ड का सिक्स मोस्ट अफोर्डेबल टैक्स फ्री कंट्री टू मूव इन 2026. यस, वी हर्ड इट राइट. विलियम रसल टैक्स फ्री रिलोकेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग कतर ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है. एंड ऑनेस्टली, हम जो यहाँ रहते हैं, हम यहाँ सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं लगता है, ये डेली लाइफ में फील भी होता है. जब देखिए ना, दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में सैलरीज आती है, लेकिन उसमें से बहुत ह्यूज चंक टैक्स के लिए चला जाता है. लेकिन यहाँ कतर में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, विच मीन्स जो आप कमाते हो उसका ज्यादा हिस्सा एक्चुअली आपके फ्यूचर में, फैमिली में, उस ड्रीम्स पर, उस पर लगता है. लेकिन अफोर्डेबिलिटी जो है सिर्फ चीप होने का नाम नहीं होती है. कतर की रियल लग्जरी है इट्स क्वालिटी टू कंफर्ट रेशियो, सेफ रोड्स, लेट नाइट सिक्योरिटी, क्लीन पब्लिक स्पेसेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मूथ डिजिटल सर्विसेज, मेट्रो कनेक्टिविटी, और यस, एक एक्सपैट फ्रेंडली इकोसिस्टम. दैट्स द रियल फ्लेक्स फॉर कतर, नहीं? अच्छा, पहले ना लोग गल्फ सिर्फ अर्निंग डेस्टिनेशन के लिए आते थे, अब कतर ना स्लोली एक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन बन रहा है. ऐसा नहीं लगता आपको? फैमिलीज यहाँ पर जब सेटल होती है ना, तो वुमेन दे फील सेफ यर ट्रैवलिंग अलोन. बच्चों के लिए यहाँ पर पार्क्स है, सेफ्टी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ग्लोबल स्कूल्स है. मतलब यहाँ ये जगह अब सिर्फ एक काम की जगह नहीं है, ये एक प्रॉपरली क्यूरेटेड लाइफ लगने लगी है. एंड मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम एक्सपैक्ट्स भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, डेफिनेटली, बिकॉज कतर सिर्फ बिल्डिंग्स से नहीं बना है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बना है, यहाँ के रहने वाले लोगों से भी बना है. सो अगर कोई आपसे पूछे कि कतर में क्या खास है, तो बस कहना यहाँ सिर्फ टैक्स कम नहीं, टेंशन भी कम है. माइक से दिल तक आप स्ट्रीम के साथ जुड़े हो और मिर्ची इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: vierba la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: मोटर से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी.
2: मैडम प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है.
1: ठीक है सर.
2: 5 सेकंड जल्दी.
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
1: हेलो.
2: हेलो.
1: हेलो.
2: प्लीज जल्दी बता दो.
1: सर ये कोई कस्टमर के लिए गाड़ी का हेलो
2: बात होल्ड नहीं कर सकता. हेलो.
4: हाँ जी सर.
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर पे हैंड ब्रेक खींच दो.
2: एक सेकंड.
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर.
2: एक सेकंड रुकिए.
4: सर साइड में, लेफ्ट साइड में.
2: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज खाता था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर. इग्निशन ऑफ कर दो.
2: इग्निशन. एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं.
4: हाँ जी.
2: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा. एक सेकंड कुछ और. ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी.
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
4: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
2: एक सेकंड रुकिए.
4: क्या हो गया?
2: गाड़ी ठुक गई.
3: मैडम क्या नाम है आपका?
1: दिव्या.
3: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
1: Oh, I was so dead, I don't know what happened.
5: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची. It's

0: भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: I think Arijit Singh, only you could have pulled this song off so amazingly. I mean, पहली बार आपके और मेरी तरह ही जब मैंने गाना सुना था ये, I just couldn't believe my ears कि really ये वही अरिजीत सिंह है जो दिल तोड़ देने वाले भी गाने गाता है और इस तरह से mesmerize करने वाले गाने भी गाता है. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings और हमारी कतर की खबर लेकर आई हूँ जी.
1: क्या खबर कतर?
0: देखिए कल से ही कतर में एक जबरदस्त सा माहौल हो गया है क्योंकि फोर्थ GCC गेम्स दोहा वो शुरू हो चुका है 11th ऑफ मई से और ये चलेगा अंटिल 22nd ऑफ मई. और मजे की बात भाई साहब, ये एब्सोल्युटली फ्री है. अब इसमें कितने सारे स्पोर्ट्स है ये सुन लीजिए लिस्ट. अगर इनमें से आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट है ना, देन यू शुड गो एंड विजिट यार, गो एंड वॉच इट. देखिए यहाँ पर आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, बोलिंग, बॉक्सिंग, क्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, हैंडबॉल, कराटे, पैडल, शूटिंग. एंड जहाँ तक कतर में पैडल का एक अलग ही क्रेज चल रहा है फिलहाल, है ना. स्नूकर भी बहुत शौकीन होते हैं लोग, स्विमिंग के शौकीन होते हैं, टेबल टेनिस, टेक्वांडो, वॉलीबॉल एंड सो मेनी मोर. सो अगर इनमें से कोई भी ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच इट बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ना. और यहाँ पर 1000 से ज़्यादा एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर फ्रॉम 6 कंट्री, जिसमें हमारा कतर भी है ऑफ कोर्स, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है एंड ओमान. सो ये कतर में बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पर हो रहा है जैसे अल शखब अरेना, एस्पायर डोम, हमद एक्वेटिक सेंटर एंड सो मेनी मोर. वैसे बता दो इसका जो ये था ओपनिंग था, ये अल शखब अरेना में इसकी ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुई. कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुए एंड द ऑपरेटर वन गल्फ वन हार्ट. सो विद दिस, जब स्पोर्ट्स की बात आती है, स्पोर्टिंग इवेंट की बात आती है, सो कतर हमेशा सालों साल विथ इवेंट्स ऑन इवेंट्स एक अपने आप में जबरदस्त बेंचमार्क सेट करता है. एंड हियर इट इज विद गल्फ दोहा गेम्स राइट हियर, फोर्थ GCC गेम्स टू बी स्पेसिफिक, इन हैपनिंग इन अवर वेरी ओन कतर. फिलहाल तो माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100813।
5: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। MK आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अलवक्रा अल जनूब गार्डन्स ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424040। MK आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सीलेंस।
6: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक मिर्ची मॉर्निंग्स पर। ये आफरीन के साथ आपका स्वागत है। ये वो आफरीन है जो थोड़ी सी इमोशनल, बहुत फिल्मी और कभी कभार जिंदगी कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, कहीं शेर होते हैं या शायरियाँ होती हैं जो आफरीन के दिल तक जब पहुँच जाती है ना, तो शी इंश्योर्स कि ये जो है ये आप तक भी पहुँचाए। जैसे आज की मेरी डायरी में कुछ लाइंस ऐसी है, शायरी नहीं बट लाइंस है, और वो ये कहती है
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: अर्ज किया है कि नजाकत लेकर आंखों में वो उनका देखना, तौबा। नजाकत लेकर आंखों में वो उनका देखना, तौबा। इलाही हम उन्हें देखे या उनका देखना देखे। हाय, सो बस प्लेइंग अभिजीत की आवाज में ये अगला गाना फॉर योर राइट हियर ऑन मिर्ची। और अगर मेरा ये सेगमेंट अगर पसंद आता है तो जरा 5000 1896 पर व्हाट्सएप करके हेलो शलो और कुछ तो बोल दीजिए भाई, अच्छा है नहीं है या दिल को बस पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे ही माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आर ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट। बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: खट खट,
2: हू देयर?
1: अगर कर,
2: अगर कर हू,
1: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
2: खट खट, हू देयर?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मेकअप आजी की आवाज में गाना फ्रॉम द मूवी तनु एड्स मनो राइट ईयर। ये जुगनी का जाने का टाइम आ गया है, लेकिन एक स्वीट हार्ट का आने का वक्त भी तो आ गया है। यहाँ पर
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और वेलकम शेलकम तो अब मैं नहीं करूंगी, यहाँ पर वेलकम शेलकम कोई और करने वाला है आपका कुछ ही देर में।
2: अंशु मुझे एक जो तुम्हारी लाइन है आज वो मैं बोल रही हूँ तुम्हारे बिहाफ में।
0: बिल्कुल
2: ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, आज का जो सवाल है मैं तुमसे पूछती हूँ।
0: ओके
2: बात बताओ, जैसे समर्स की बात होती है या हम इंडिया से आते हैं, फॉर दैट मैटर आई गेस पाकिस्तान में भी ये जो केस है इट इज एब्सोल्युटली द सेम। हर एक मौसम की कुछ ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती है जो हमारे घर में 101% बनाई जाती है।
0: ओके
2: अगर मैं तुमसे पूछने की कोशिश करूँ तो समर्स के आते ही एग्जैक्टली प्रिसाइसली किस चीज का इंतजार जो है ना वो शुरू हो जाता है?
0: देखिए बीइंग फ्रॉम मुंबई, हम लोग के लिए तो समर वेकेशन स्कूल की छुट्टियां होती है अप्रैल में से शुरू हो जाती है, तो आम का सीजन वहां पर बहुत होता है। एंड उसके पहले शुरू शुरू में जब आम पूरे आते नहीं है तो वो कैरी आती है ना, तो आम पन्ना कहते हैं हम। हाँ मम्मी की याद आ गई जब वो मम्मी आम पन्ना बनाती थी और खाने के साथ हम लोग वो आम पन्ना पीते थे। एंड इफ एनीवन फ्रॉम ये क्या कहते हैं महाराष्ट्र पर्टिकुलरली

0: कोंकणीज है. सो सोल कड़ी पता है आपको? अंशु यू माइट नॉट बी नोइंग इट. यू नो इट सोल कड़ी?
1: आई डू. आई डू. आई मीन आम पन्ना एंड सोल कड़ी. सोल कड़ी जो है मेरी महाराष्ट्रियन फ्रेंड के जरिए आई गॉट.
0: यू गॉट टू नो. कोकम का होता है,
1: कोकम से
0: कोकोनट मिल्क का होता है. एंड इट इज सो रिफ्रेशिंग एंड इट इज सो गुड फॉर हेल्थ.
1: एब्सोल्युटली. अगर कुछ पर्टिकुलर ड्रिंक्स की बात करें तो एक जो कोकम का ही ड्रिंक तुम जो बोल रही हो उसके अलावा आम का पन्ना हो गया एंड छास हो गई
0: एंड
1: मिंट का जो बेसिकली यू नो पुदीने के साथ जो शरबत बनता है हमारे घर पे ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ऑल्टरनेट डे ये बनना ही बना लाजमी है. इनफैक्ट आम पन्ना इज समथिंग दैट सिंस यू मेंशन आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट टुमारो इटसेल्फ.
0: हां और मुझे देना है तो 100. चलिए अलविदा लेती हूँ. अब इतने सारे खाने पीने की बात कर ली है बंदी ने, मुझे भूख लग रही है. टाटा बाय बाय. सायोनारा. मिलेंगे कल सेम टाइम सेम शो. माइक से दिल तक आप ट्रेन के साथ. ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: बल जुबिन होटल की खूबसूरत सी आवाज योहानी का साथ एंड मामे खान का ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, क्या प्यारा एंड बेहतरीन सा गाना। ये खूबसूरत सा गाना तो इस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जिंदगी इन ख्यालों से जुड़ी हुई एक खास बात इस वक्त जरा हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने में आई चुकी हूँ। यार, क्या आपने नोटिस किया है कि हम अक्सर उन चीज़ों से डरते हैं जो अभी हुई नहीं। हम स्ट्रेस लेते हैं उन सिचुएशंस का जो शायद कभी आए ही ना। यार, एक छोटी सी बात है, इमेजिनेशन में इतनी बड़ी बात है या इतनी बड़ी जान है कि हमारा आज हमारा प्रेजेंट जो है ना, कई दफ़ा रियलिटी छोड़ उसके बोझ के नीचे बस दब ही जाता है। एंड सबसे स्ट्रेंज पार्ट आपको क्या है पता है, कि अगर इमेजिनेशन इतना पावरफुल है तो हम उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाते। अगर दिमाग कहानियां बना ही सकता है तो फिर क्यों ना कुछ ऐसी कहानियां बनाएं जहां उम्मीद हो, जहां सुकून हो, जहां प्यार हो या जहां फिर ट्रस्ट हो। बिकॉज थॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे हमारी फीलिंग्स बनते हैं, फीलिंग्स जो हैं उसी से वर्ड्स हमारे निकलते हैं, एंड वर्ड्स ग्रेजुअली जो हैं हमारे एक्शन के रूप में सामने आ ही जाते हैं। एंड सम हाउ दैट इज एग्जैक्टली हाउ लाइफ स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग। इसीलिए कहा जाता है ना कि मैनिफेस्टेशन जो है ये कोई मैजिक नहीं, इट इज सिंपली द डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स। और अगर सच में ऐसा कुछ है तो क्यों ना यार, अपनी सोच में अपने ख्यालों में अगर कुछ लेकर आए तो वो खूबसूरत कहानियां कि जब वो दुनिया के सामने आए या दुनिया में जब लिखी जाए तो आपके अलावा औरों की जिंदगी जो है वो रोशन हो ही जाए। वो कहते हैं ना कि सोच की शाखों पर जब उम्मीद के फूल खिलते हैं तभी तो जिंदगी के मौसम भी खूबसूरत मिलते हैं। डर से नहीं भरोसे से जीना सीखो, क्योंकि जैसा सोचते हैं हम जिंदगी में वैसे ही रास्ते मिलते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ इस वक्त करते हैं मीठी मिर्ची की शुरुआत। एंड अगर ये बात में है दम यार, तो एक गुड मॉर्निंग मैसेज तो इस वक्त बनता है 5000 1896 5000 1896। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में इस वक्त आपको एक प्यारा सा गाना सुनाती हूँ। एक बार फिर से अर्ली 2000s में डाइव इन करते हैं, क्या कहती पब्लिक। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: हेलो
2: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
1: जी बोल रहा हूँ
2: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
1: क्यों
2: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर
1: जी
2: आपने धरने पे बैठे थे आप
1: जी बैठे थे
2: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ आके लगवा लो जल्दी से
1: हाँ तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
2: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
1: जी जी गए थे जी
2: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
1: जी जी
2: आपके पड़ी लाठी कोई
1: मेरे तो नहीं पड़ी
2: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
1: सर आप नाराज क्यों
2: नहीं नाराज की बात है बताइए हाँ बताओ
1: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था कहाँ पे बहुत दूर था सर लाठी
2: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई बहुत दूर
1: था सर
2: भाई तने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
1: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती
2: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठियां रजिस्टर पे चढ़ाई अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
1: सर नाराज क्यों है मैं
2: नहीं
1: तो
2: नाराजगी की तो बात है
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया
2: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियां मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई यार
1: मैं शाम में आ जाऊंगा
2: यार नहीं नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है बहुत दूर था
1: नाराज
2: वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ू को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: पलवानी तो सिर्फ छोरे करें
4: हमारी चोरियां छोरों से कम है के
0: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM मिर्ची

0: गुलनज़र की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। इसके अल्फाज यार, शब्द क्या कमाल के शब्द। मतलब ज़िंदगी में ऐसा कोई हो जिसके लिए हमारे दिल से ये ख्याल निकल पाए, भाई इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, है ना?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to VT Mirchi and this is Aajay Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड यार, पता है हम ना अक्सर सोचते हैं कि इसका सोशल सर्कल जो है इतना बड़ा है, इसके इर्द गिर्द तो इतने लोग हैं। यार, जिंदगी जीने के लिए एक इंसान काफ़ी है, भीड़ आखिरकार वो तो किसी ही चाहिए। चलिए जी, इस वक्त एक काम करते हैं, आप तक एक बहुत ही खास बात जो है ना वो पहुँचा ही देते हैं। देखिए यार, कतर में इस वक्त अगर आप डेवलपमेंट को देखने की कोशिश करें तो शायद ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं जहाँ पे आपको ग्रोथ जो है वो नजर ना आए। इनफैक्ट अगर पिछले 10 से 15 सालों की जर्नी को अगर मैं कतर में देखने की कोशिश करूँ, इट्स गोइंग टू बी 14 ईयर्स सिंस आई एम इन दोहा। इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई 14 ईयर्स इन दोहा। यस, इट वॉज एक्जैक्टली 1st of May व्हेन आई लैंडेड इन कतर एंड वाओ, इफ आई कुड सी, इट्स बिन 14 ईयर्स एंड दे जस्ट फ्लू बाय। टाइम जो है ना बस यूं ही निकल गया। तो कतर में चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, यू नो टेक्नोलॉजी की बात करें, हर एक फील्ड को हमने ठीक अपनी आंखों में बढ़ते हुए देखा है। एंड बस जहाँ पे एक तरफ देश बढ़ा है तो आवाम जो है उनके साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। एंड इस वक्त कतर ने एक बार फिर से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, विच इज़ बेसिकली नेशनल वॉलंटियर प्लेटफॉर्म। नाउ दिस बेसिकली इंटेंड्स टू मैक्सिमाइज इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। अब ये पूरा का पूरा स्लोगन क्या है? अ लास्टिंग इम्पैक्ट। ये जो डिजिटल सिस्टम है, ये जितने भी वॉलंटियर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में अपनी सर्विसेज को देना चाहेंगे, उनके एफर्ट्स को नेशन वाइड यूनिफाई करेगा, इंडिविजुअल्स को कनेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने जितने घंटे काम किए हैं उन आवर्स को डॉक्यूमेंट किया जाएगा एंड साथ ही उनके सपोर्ट को हर एक फील्ड या हर एक सेक्टर में, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट हेल्थ, हर जगह उनको डॉक्यूमेंट करने के अलावा ना ही सिर्फ उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा बल्कि ये इंश्योर किया जाएगा कि कतर नेशनल विजन 2030 के तहत जो ये माना गया है, हर किसी के काम को उसका इंपॉर्टेंस देना, उसका वैल्यू देना, ये प्रोसेस यूनिफाई होगा इस वॉलंटियर प्लेटफॉर्म के जरिए। बढ़िया जी, अब जैसे ही नेशनल वॉलंटियर प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, ये बात मैंने आपको बताई है, तो फटाफट से जाइए नेशनल वॉलंटियर प्लेटफॉर्म, इसे सर्च करिए, इसके बारे में और पढ़िए। एंड अगर आपको लगे कि आपको आने वाले किसी इवेंट में वॉलंटियर करना है या हिस्सा बनना है तो बस उसके सारे डिटेल्स उस पेज में ज़रूर रहेंगे। पार्टिसिपेट करिएगा, हिस्सा बनिएगा। एंड सुनो, कहीं अगर काम कर रहे हो फ्री की अच्छी खासी टिकट मिल जाए कोई बड़े इवेंट की तो वो मुझे दे ही देना। अब जाते जाते काम की बात तो करते हुए जाएंगे ना जी। अरिजीत सिंह की आवाज़, निकिता गांधी का साथ एंड एक बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म भूत बंगला, राइटर फॉर यू, एन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Well, Fahim Abdullah ki khubsurat si awaaz and what a lovely track it is. The title track of film Sayyara, Aneet Padda and Sati Ahan Pandey. Ye do kirdar aise ban chuke hain ki bhi hamare zehen pe inka naam jo hai na hamesha ke liye bas wo ho hi chuka hai, seal ho chuka hai. Having said that, itne khubsurat se gaane ko sunne ke baad ab koi to khubsurat si dhun hai, you know, dhamakedar jo us waqt aapke beech mein pesh kar dun. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड साथ ही वो सेगमेंट आपके बीच लेकर आई हूँ जहाँ पे मुझे मिलता है मौका कि आपको मैं जरा और करीब से जान सकूँ, पहचान सकूँ. अरे जब तक बातचीत ना होगी, जानना पहचानना होगा तो कैसे होगा. एक बात बताओ ना, आपका ये वन साइडेड लव मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ यार. मतलब आपने मुझसे इतनी मोहब्बत की है, इतना प्यार मुझे दिया है कि हर दिन आप मुझे सुनते हैं, तो भैया मुझे भी तो पता चले कि आखिरकार वो कौन है जो दिल से मुझसे इतना कनेक्टेड है. तो चलिए ना, इसका एक मौका जो है इस वक्त मैं आपको दे ही दूं. वेल, आपसे मैं पूछने वाली हूं एक सवाल एंड आपको देना होगा इसका एक सही जवाब. एंड जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप मुझे रोज सुनते हैं तो बस दिन का वो वक्त आ चला है जब कोई तो थीम म्यूजिक है किसी ट्रेंडिंग सी फिल्म का, ट्रेंडिंग सा म्यूजिक जो मैं इस वक्त आपके बीच प्ले करती हूं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये थीम म्यूजिक है तो है किस फिल्म की. नाउ ये गाना ऐसा है जो ना जाने कितने बाइकर्स की गाड़ी में बजा करता था वो स्पीकर लगा के, भाई हमारे कॉलेज टाइम पे. अभी कौन सा आप समझ जाएंगे. लेट मी डू वन थिंग, आई एम गोना बी प्लेइंग द म्यूजिक राइट हियर अप फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू इज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर एंड सेंड इट ओवर टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दैट इज 5000 1896 5000 1896. वी विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु एंड आई वुड ट्रूली रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज. सो हियर यू गो. राइट हियर, ये थीम म्यूजिक है तो है किस फिल्म से. नाउ यू कैन नॉट रियली से कि भाई एक बार फिर से बनाओ इसे, एक बार सुन के तो आइडेंटिफाई करना है बॉस. 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. जल्दी भेजो, फटाफट से भेजो. मीनवाइल रीना भारद्वाज की आवाज में एक बहुत ही सूदिंग सा ट्रैक मैं आप तक पहुंचाती हूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
3: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
2: शाहरुख खान इतना चार्म कहाँ से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: कट कट।
5: अबे कौन है?
4: उत्तपा।
5: उत्तपा कौन?
4: उत्तपा मैं दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
5: खट खट। Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

आशा भोसले और अदनान स्वामी की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आपको एक्साइटिंग सी बात भी बता दी जाए। आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने आ चुकी हूँ। एंड भाई, जिस धुन ने सारे के सारे लड़कों को पागल किया था, जरा उसकी कहानी इस वक्त आपके बीच पेश हो जाए। वेल, अब से कुछ देर पहले कोई तो थीम म्यूजिक है जो मैंने आपके बीच पेश की थी, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये थीम म्यूजिक है तो है किस फिल्म से। एक काम करते हैं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है फॉर द सेक ऑफ दोस पीपल, जल्दी से थीम म्यूजिक में एक बार फिर से बजाती हूँ। एंड अगर आपको लगे कि अभी भी सुनते सुनते आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, फटाफट से करेक्ट आंसर राइट अप वेयर 5000896। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल हियर यू गो। ओफ यार, कुछ कुछ होता है, वो जोर का एड्रेनलिन रश होता है ना, इसको सुनने के बाद जरूर होता है। अब देखें लोगों का क्या कहना है, कौन सा लगी कि अभी भी सुनते सुनते आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, फटाफट से करेक्ट आंसर राइट अप वेयर 5000896। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल हियर यू गो।

0: है अंशु जी, ये तो गाना अपना लेजेंडरी मिस्टर लेजेंड लॉर्ड उदय चोपड़ा का मूवी का धूम का पार्ट फर्स्ट पार्ट का, और गाना था धूम मचा रे वंस मोर कम ऑन यू पीपल नेवर।
1: क्या बात यार, पूरे स्वैग के साथ इन्होंने रिप्लाई किया है एंड दिस लिटरली मेड माय डे, थैंक यू सो वेरी मच। वेल वी हैव गॉट सम मोर पीपल हु हैव रिस्पोंडेड, जरा देखते हैं कि उनका इस वक्त क्या कहना है।
2: गुड मॉर्निंग अंशु।
1: वेल इनकी आवाज जो है थोड़ी सी कट गई है, जी हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इट इज धूम, ऑफ कोर्स यार इट इज धूम मचा ले।
3: गुड मॉर्निंग मिर्ची अंशु जी, ये है धूम फिल्म से।
1: Absolutely, ये बिल्कुल धूम फिल्म से है। Meanwhile, फटाफट से बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं। देखिए मैं आप सबके कॉल्स आंसर करूंगी लेकिन इस लिंक के बाद करूंगी। Well, you guys have identified it absolutely correct, तो सबसे पहले आपके लिए तालियां हो जाए। Well, इसके साथ ही अगर इस फिल्म का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूं, अरे भाई थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ सबसे बातें होंगी लिंक खत्म होने के बाद होंगी। Well, अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी सबसे ज्यादा स्टाइलिश हम बात करते हैं फ्रेंचाइजेस की, तो अगर एक नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में उभर कर बाहर आता है सो दैट इज धूम। एंड सच कहें धूम मचाले जो है ये सिर्फ एक गाना नहीं था यार, हमारी ना कहीं ना कहीं एक एरा हुआ करता था। सब कुछ शुरू हुआ साल 2004 में जब डायरेक्टर संजय गांधवी और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के साथ इंडिया को उसकी पहली प्रॉपर बाइक एक्शन फिल्म देने का फ्रेंचाइज देने का डिसीजन लिया। स्टार कास्ट कौन थे? अभिषेक बच्चन एज एसीपी जय दीक्षित, उदय चोपड़ा एज अली एंड विलन के रूप में भाई अल्ट्रा कूल बाइकर गैंग लीडर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन इब्राहिम। और अगर ऐसा विलन होना तो सच को हीरो की ना किसी को दरख्वास्त ना हो कहानी जो थी काफी सिंपल थी लेकिन प्रेजेंटेशन भाई एब्सोल्युटली इंटरनेशनल, फास्ट बाइक्स, लेदर जैकेट्स, हाई स्पीड चेजेस एंड वो बैकग्राउंड स्कोर, एंड यार उसके बाद आया धूम 2 एंड बिलीव मी यहां फ्रेंचाइज जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंची गई जब एंट्री हुई ऑफ द ग्रीक गॉड हिमसेल्फ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऋतिक रोशन। एंड ऑनेस्टली ऋतिक एज आर्यन ही चेंज द गेम फॉर एवर, दैट स्वैगर, दोस डिसगाइजेस, दैट बॉडी लैंग्वेज, भाई कोई इतना कूल कैसे हो सकता है? तब जिंदगी में पहली बार क्रश हुआ था मुझे ऐश्वर्या राय बच्चन एंड बिपाशा बसु। एंड अब लंबे इंतजार के बाद किसी बात का इंतजार है, सो दैट इज ऑफ धूम 3। एंड माना जा रहा है कि इस वक्त विलन के तौर पे अगर कोई आने वाले हैं तो वह परफेक्शनिस्ट आमिर खान, डबल रोल ट्विस्ट, सर्कस बैकड्रॉप, शिकागो स्केल वायरसेस, क्या होगा कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। धूम जब धूम 3 आई ये आने वाले वक्त ने सारी की सारी बातें बता दी। कैटरीना कैफ के साथ अभिषेक एंड उदय भी नजर आए, अब धूम 4 में आखिरकार कौन होगा, क्या होगा, सारी बातें मैं बता दूं तो आप क्या करेंगे? एक काम करते हैं विशाल डिडलानी एंड डोमिनिक की आवाज में इस वक्त आपको मैं एक गाना ही सुना देती हूँ, धूम 1, 2, 3। इन तीनों एडिशंस में आपकी सबसे फेवरेट कौन सी रही आप मुझे जरूर बताना। 5000 1896 इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। एंजॉय।

विशाल डिडलानी की आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। एक बार फिर से कोक स्टूडियो का मैजिक जो है हमारी जिंदगी में ना सर चढ़ के बोला। लेकिन सच कहूं, अब इस वक्त मैं आपके बीच कोई और मैजिक पेश करने वाली हूं जो सॉलिड सर चढ़ के बोलेगा।

0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. लेकिन सच कहूँ, आज जो ये बात मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. कईयों की जिंदगी में मिठास आएगी एंड सॉलिड मिठास आएगी, लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ना मिर्ची लगेगी एंड सॉलिड मिर्ची भी लगेगी. देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है ना, ये बड़ी कमाल होती है यार. हम जो है ना नॉर्मली खुश होते हैं या तो नॉर्मली दुखी होते हैं, यू नो, इसके बीच का फेज बहुत रेयर होता है. लेकिन पता है, ये खुशी या ये जो गम है या ये दुख है, ये हमसे ज़्यादा ना किसी और से लिंक्ड होता है. आप ज़रा देखिए, आपका ज़रा ज़्यादा अच्छा हो गया है, आपके दोस्त का थोड़ा कम अच्छा हुआ है, भाई आपकी जिंदगी में खुशी आएगी ना, परम पार आएगी. लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपके साथ तो अच्छा हुआ लेकिन आपके दोस्त के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो अधिकतर लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि उनकी खुद की खुशी जो होती है ना, वो ज़रा सी कम हो जाती है. वो हमने बचपन से सीखा हुआ है ना कि भाई मुझे अपने फेल होने का दुख तो था, लेकिन ये दुख जो है ज़रा कम हो गया जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त भी जो है वो फेल हो गया. राइट यू, एक काम करते हैं, अभी जो खुशी का पैमाना है इसे ज़रा बढ़ाते हैं. लेकिन कैसे, ज़रा बताते हैं. वेल, एक्सचेंज के रीच में आज इतने कमाल हैं, इतने बेहतरीन हैं कि जितने लोगों ने पैसे भेज दिए हैं उन्हें कहीं ना कहीं मिर्ची लगेगी कि हाय हमने क्यों भेज दिया जब पता था इसने अभी तक ना भेजा है. एंड जिन्होंने नहीं भेजा ना गुरु, उनके लिए 101% आज जो है चांदी चांदी है, साथ में सोना भी है, पक्की बात है. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आईपे मनी पर आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.18. नाउ दिस हैपेंस टू बी ऑल टाइम हाई. क्या बात है यार. एंड इसके साथ ही अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात करूं, सो इट इज 77.11. बांग्लादेशी टाका इज एट 33.67. श्रीलंकन रुपीस इज एट 88.36. नेपाली रुपीस एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचते हुए पहुंच चुका है 41.71 पर. अच्छा चलो यार, आज ना मुझे आपसे कुछ जानना है. मैंने आपको अपनी बात तो बता दी, अपनी कहानी तो बता दी. जब आप कतर आए थे उस वक्त एक्सचेंज रेट्स यूजुअली कितने हुआ करते थे? मतलब 1 रियाल के अगेंस्ट आप जिस भी देश से आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, आप जहां से भी हैं, तो उस वक्त जिस भी साल आप आए एक्सचेंज रेट टेंटेटिव कितना हुआ करता था? आई रिमेंबर मैं आई हूँ 2012 में, एंड जितना मुझे याद है 2012 में 13-14 रुपीज के आसपास था. राइट, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आपको ज़्यादा ध्यान होगा, मेरी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर हो रही है. नहीं नहीं, उम्र नहीं बढ़ रही, बच्चों की ना याददाश्त भी कम होती है. तो आप जिस साल भी कतर आए, आप कब आए मुझे ये बताएं, एंड उस समय एक्सचेंज रेट्स क्या चल रहे थे. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. चलिए इसके साथ ही एक्सचेंज रेट टुडे इज ब्रॉट टू यू बाय
1: लाया आई पे बेस्ट एक्सचेंज रेट्स. भेजो खुशियां और पैसे दोनों ही घर पे.
0: इसके साथ ही कोई बहाना नहीं चलेगा, सही जवाब बताना पड़ेगा. केके एंड शान की आवाज 10 बहाने राइट ऑफ हियर फॉर यू. एंजॉय. बिंदी का नाम अंशु. एक स्विच करण औजला की आवाज में राइट नाउ प्लेइंग बॉयफ्रेंड.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana.
2: Rabana.
1: Burka, burka. Na vidva la burka.
2: Milci, burka.
3: हेलो,
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
3: गुड इवनिंग
4: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
3: ओके
4: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
3: फोर.
4: वेट सर, वेट.
3: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
4: सर यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
3: डर जाएगी.
4: गुड सर, वेरी गुड सर.
3: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
4: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
3: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
4: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
3: पूछो यार.
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90.
3: 80-90 पूरे 100.
4: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषम मावे पोषम पाल, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
3: जेल में जाना पड़ेगा.
4: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
3: समझा नहीं मैं.
4: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
7: आएंगे दीदी.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
5: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: बंजारी की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़, कितना खूबसूरत एंड प्यारा सा गाना। चलिए जी, ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जिन दिनों का हमें इंतजार था, जो हमारी जिंदगी में शामिल हो चुके हैं, जरा उनकी बात अब हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का तो मैं लगा ही रही हूँ, लेकिन कतर में इतनी खास और खूबसूरत बातें हो रही हैं, इतनी अच्छी इवेंट्स हो रहे हैं भैया, अगर आप उसे देखने ना गए तो फिर क्या ही के। जरा उसकी भी दास्तान जो इस वक्त आपके बीच पेश कर दिया जाए। इस वक्त अगर कतर में धूमधाम से कुछ मनाया जा रहा है, सो दैट इज द 4th GCC गेम्स दोहा 2026। एक बार क्या बात है यार, सबसे पहले तालियां हो जाए। देखिए, अगर मैं 4th GCC गेम्स की बात करूं तो तकरीबन 1000 एथलीट्स जो हैं इस वक्त कतर पे मौजूद हैं, जो कि कम्पीट करेंगे अक्रॉस 17 स्पोर्ट्स एंड दिस विल मेक इट वन ऑफ द रीजन्स बिगेस्ट मल्टी स्पोर्ट गैदरिंग। 22nd of मई तक इवेंट जो है चलने वाला है, कल ही ये शुरू हुआ है एंड साथ ही कॉम्पिटिशन्स जो हैं कतर के ढेर सारे लोकेशंस में इस वक्त आपको होते हुए नजर आएंगे। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल अपने बच्चों को ये दिखाना है, कुछ सीखना है, समझना है, क्योंकि बात इतनी है ना यार, हम जो हैं यही स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड टूर्नामेंट्स देखने के लिए ना जाने कितने पैसे खर्च करते हैं दूसरे देश दुनिया जाकर। एंड मैं एक बात कहूँ, कतर में आने के बाद मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से फील एंड रियलाइज हुई कि जिन चीज़ों को देखकर मैं टेलीविजन में कभी फैसिनेट हुआ करती थी, जिनके बारे में अखबारों में हम पढ़ा करते थे, जो बड़े बड़े नाम एंड चेहरे जो हैं देश दुनिया में नाम रोशन करते थे, उन्हें ठीक करीब से अगर हम देख पाएं तो कतर की वजह से कितने मौके हमें ऐसे मिले यार। तो एक बार फिर से ये मौका जो है हमारी लाइफ में ज़रूर आया है कि वर्ल्ड क्लास एथलीट से हम कुछ सीख सकें, अपने बच्चों को लाइव एग्जाम्पल के जरिए सिखा सकें और हम साथ में एंटरटेन भी हो सकें। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से आप जाइए कतर ओलंपिक्स के पेज पर, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे विद टाइमिंग्स की, कहाँ पर कौन सा मॉड्यूल जो है वो हो रहा है, कौन सा स्पोर्ट्स कंडक्ट किया जा रहा है या कौन सा कंपटीशन हो रहा है। बढ़िया है जी, एंड अगर कभी जाने का प्लान है तो बताइए यार, साथ में चलते हैं, क्या कहती पब्लिक। अलका याग्निक की आवाज सुर निगम का साथ एंड 90s में एक बार फिर से डाइव इन किया जाए एंड एक प्यारा सा गाना आपके रास्ते पहुंचाया जाए। एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
2: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. वेल, अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो यार इतनी सारी खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने के बाद ये रियलाइज हुआ कि भैया इसे तो हमने इस फिल्म में देखा था, ऐसा वाला सीन जो है कहीं इस पिक्चर में नजर आया था. वेल, मैं जो हूँ ना एक छोटे शहर से आती हूँ लेकिन दिल जो है काफ़ी बड़ा रखती हूँ. अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो मेरी पैदाइश हुई राजनांदगांव में, एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली आई मूव टू रायपुर, दैट हैपेंस टू बी द कैपिटल सिटी ऑफ कतर. तो उसके बाद काफ़ी सारे सिनेरियोज, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सब फिल्मों में देखी थी, पिक्चरों में देखी थी, लेकिन हाँ कतर आने के बाद समझ में आया कि वो हकीकत में और भी ज्यादा खूबसूरत होती है. चलिए जी, अब कतर की कोई तो बहुत ही खास जगह है जिससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं इस वक्त आपसे पूछती हूँ. आपको मुझे फटाफट से जवाब देकर यह बताना है कि मैं इस वक्त कतर की कौन सी खूबसूरत सी जगह की बात कर रही हूँ. जरा गौर से सुने एंड अगर आपको लगे कि आपने करेक्ट आंसर पहचान ही लिया तो फटाफट से मुझे भेज देना. लेकिन कहा, एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, दैट इज 5000 1896, 5000 1896, विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची आंशु. वेल, समंदर के किनारे ये एक ऐसी जगह है जहां स्काईलाइन भी है और साथ में सिरेनिटी, सुकून भी है. जहां लोग सुबह वॉक करते हैं तो रात में खूबसूरत यादें बस संजोते जाते हैं. जहां से दोहा सबसे खूबसूरत दिखता है एंड साथ ही इस जगह में दोहा के साथ हम सबका दिल बसता है. जरा तो ये तो बताएं कि ये जगह है तो है कौन सी. वैसे इतना बता दूं, अगर जश्न की बात करूं, सेलिब्रेशन की बात करूं, भाई ये वही जगह है जहां पे कतर नेशनल डे का सेलिब्रेशन सबसे धूमधाम से किया जाता है. 5000 1896, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, फटाफट से सही जवाब भेजें एंड आपसे कुछ देर में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो इस जगह के बारे में मैं आप तक पहुंचाऊंगी. एंड आई वुड रियली ट्रूली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज. मीनवाइल, सुरु निगम की आवाज, श्रेया घोषाल का साथ, फिल्म का नाम कुर्बान एंड ये अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंडकिड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
3: मैं कहता हूं उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है। वो जो खेलते हैं और जिस गति से वो लोग खेलते हैं, हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उसमें खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
2: क्या आपके ग्रैंडकिड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: अज्जू।
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए
5: खट खट, हु दैट?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi, it's hot.

0: Well, विशाल मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. एंड बस जब जब आपके जवाब आते हैं, जब से आपसे कोई बातें होती हैं, तो मेरे दिल में, मेरे जहन में एक ही ख्याल आता है कि भाई कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है ना.
1: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You're listening to me, Team Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड इसके साथ ही जिस जगह की दास्तान, जिस जगह की कहानी मैंने अपनी जुबानी सुनाई थी, जरा उसका सही जवाब जो है वो पहचान लिया जाए. हैविंग सेड दैट, एक काम करते हैं. मुझे पता है कि कई लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया होगा, तो आखिरकार मैंने पूछा क्या था, ये सवाल उनके सामने मैं रिपीट कर दूँ. आपके सामने पेश की गई थी एक पहेली जिसे आपको बुझानी थी, सुलझानी थी, एंड ये पता करना था कि आज कतर की कौन सी आइकॉनिक जगह की दास्तान मैं सुनाने जा रही हूं. एंड द पहेली वाज, समंदर के किनारे जहां स्काईलाइन भी है, सेरेनिटी यानी कि सुकून, पीस भी है, जहां लोग सुबह वॉक करते हैं, रात में खूबसूरत यादें बनाते हैं, जहां से दोहा सबसे खूबसूरत दिखता है, बताइए वो जगह आखिरकार है तो है कौन सी. भाई इस जगह पे तो दोहा का दिल बसता है, जरा देखिए लोगों ने क्या कहा है.
2: हेलो आरजे अंशु, दिस इज मधुलिका कॉलिंग. जिस जगह की आप बात कर रही हैं, आई थिंक उसका नाम है द एरिया ऑफ कॉर्निश. थैंक यू.
3: हेलो अंशु जी, आई थिंक आंसर शुड बी कॉर्निश. हाँ, कॉर्निश आई थिंक करेगा आंसर. इफ द कतर इज क्वीन, देन कॉर्निश इज नेकलेस ऑफ दैट क्वीन. आंसर इज कॉर्निश, ब्यूटीफुल कॉर्निश.
4: अंशु, आप जो प्लेस का नाम बोलता है ना, ओल्ड दोहा फोर्ट.
5: अस्सलाम वालेकुम अंशु, कैसी आप? ठीक है. शफा हियर फ्रॉम दोहा कतर. तो ये आपने जो बोला, ये जगह है कॉर्निश.
6: हे अंशु, माय नेम इज अल्ताफ एंड द आंसर इज कॉर्निश. द कॉर्निश इज अ लवली प्लेस फ्रॉम वेयर एवरीथिंग हैज बीन ब्यूटीफुली सीन, एंजॉयड, एंड वी लव बीइंग देयर. एंड एज राइटली यू सेड दैट द कतर नेशनल डे हैज बीन सेलिब्रेटेड फ्रॉम देयर. But the other things do, you know, the FIFA arena startup was done from there where everybody enjoyed it. थैंक यू सो मच अंशु, हैव अ नाइस डे.
0: वेल, एब्सोल्युटली आप सबने जो कहा ये पूरी तरह से सही. अगर इस वक्त मैंने किसी जगह की दास्तां बयां की तो उसका नाम है कॉर्निश. तो यार, जितने लोगों ने लिख के जवाब दिया या और जितने लोगों ने भी मुझे मैसेजेस भेजे, सबसे पहले आप सबके लिए तालियां हो जाएं. देखिए, थैंक यू सो वेरी मच यार, बड़ा अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस आते हैं. इसके साथ ही आज ना कॉर्निश की कोई तो कहानी मैं आपके बीच पेश करूं. यार, आज की डेट में जब हम कॉर्निश ड्राइव कर निकलते हैं, तब ऐसा लगता है कि कोई तो फ्यूचरिस्टिक सा पोस्ट कार्ड जो है ना, हमारे बीच पेश कर ही दिया गया है. लेकिन इमेजिन करें, करीब 50 साल पहले जब ना ही कोई स्काईलाइन थी, ना वेस्ट वे की ये टावरिंग बिल्डिंग्स थी, ना इतनी लाइट्स, ना ही इतना ट्रैफिक, बस समंदर हुआ करता था, एंड छोटी छोटी फिशिंग बोट्स थी, और दोहा एक बहुत ही सिंपल पर्ल डाइविंग टाउन उनके नाम से जाना जाता. कहते हैं कि पुराने कतर में लोग जो है अक्सर शाम में इस किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, फैमिलीज जो है कुछ अच्छी यादें बनाया करती थी, एंड जिंदगी जो है वो गुजर रही थी अच्छी तरह से. लेकिन फिर आया एक दौर डेवलपमेंट का, एडवांसमेंट का, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1970s एंड 80s, एंड कॉर्निश एरिया को लिटरली सी रिक्लेम करके बनाया गया. सी रिक्लेम एंड सन, समंदर से जमीन निकाली गई सो दैट दोहा कुड ड्रीम बिगर. एंड फाइनली 1982 में एक बिल्डिंग बनी जिसने पूरे कतर का पोस्ट कार्ड फाइनली बदल ही दिया. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक शेरेटन ग्रैंड दोहा. एंड अगर आज भी आप गौर करें तो उस पिरामिड शेप वाले शेरेटन में ओल्ड कतर की सोल जो है ना, यहाँ बसती है. एंड यार, आज देखकर इतना अच्छा लगता है कि अगर कॉर्निश की हम बात करें तो वो हमारी पहचान है. कतर के रूह के साथ कतर का दिल भी अगर

है तो वो है कॉर्निश। एंड सच कहूं, जब मैं पहली बार दोहाई तो सबसे पहली जगह जो मैंने एक्सप्लोर की थी दैट वॉज कॉर्निश। वॉट वॉज इट फॉर यू? 5000 1896। कतर आने के बाद सबसे पहली कौन सी जगह आपने देखी बताना जरूर। मीन वाइल गुरु रंधावा की आवाज हीर का साथ एनी पावर पैक ब्रांड न्यू ट्रैक। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंश विद यू। मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं ठीक 12। चले करते हैं इस खूबसूरत से आवर की शुरुआत एंड इसके साथ ही अगला गाना। आई एम प्रीटी श्योर ये आपको कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक जरूर करेगा, अदनान सामी की आवाज। आई एम जस्ट लविंग दिस ट्रैक। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: What a lovely track it is. And अगर इसके अल्फाज की बात करूँ, इसके शब्दों की बात करूँ, तो शायद इश्क, प्यार, मोहब्बत, या कहें वो जो पहला पहला घुमार होता है ना, उसे क्या खूबसूरत बयां किया यार. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. यार सच कहूँ, जिंदगी में ना प्यार से ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग दूसरी और कोई हो ही नहीं सकती. यू नो, यू आर इन लव. ये बात जब आप खुद महसूस करते हैं या किसी और को फील कराते हैं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. एंड कुछ अनकही सी बातें, कुछ अनसुनी सी बातें, जब मैं ये सब शब्द सुनती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं अपने स्कूल टाइम पे जाती हूँ. हमारे लिए उस समय प्यार का मतलब बस यही होता था कि भाई उसकी साइकिल जो है ना हमें नज़र आ गई है, हम स्कूल एंटर किए एंड उसकी साइकिल खड़ी है, भैया प्यार जो है वो हो गया. या इमेजिन करें कि वो जो प्रेयर टाइम होता था, सब अपनी अपनी लाइन्स में खड़े होते थे, असेंबली स्कूल की चल रही होती थी एंड बस एक झलक आपको उसकी दिख जाए कि हाँ वो जो स्कूल पे आया है या आई है. हाय, दिल को, कलेजे को ठंडक किसे कहते हैं, ये बात जो है ना हमें पता चल ही जाती थी. एंड बस अगर स्कूल में नोटबुक एक्सचेंज हो जाए या कोई डाउट के बहाने वो आपसे बात कर ले या आप उससे बात कर लें, बस नज़रें मिल जाएँ, यार इससे प्यारा, इससे प्योर लव दूसरा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, जस्ट थॉट. गाने ने ये ख्याल जो है वो ले आए एंड कहीं ना कहीं मैंने आपके पहले क्रश की याद आपको यहाँ पे दिलाई दी, लेकिन अब किसी और की याद दिला दूँ.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: वेदर अपडेट.
0: हाय अंशु, अच्छा खासा सो रहे थे, ये जगाने की जरूरत क्या थी? ये मौसम जो है ना यही काम कर रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में. वैसे अगर सूरज चाचू को इस वक्त देखने की कोशिश करें तो भाई पता नहीं इन्हें किससे इश्क प्यार मोहब्बत हुआ है. हमारे प्यार में कुछ इस तरह से खोए हुए हैं कि जो कुछ इनके पास है ना सब कुछ हमें देने की कोशिश कर रहे हैं. आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को मैं देखूँ, इट इज ऑलरेडी 39. हाँ जी, 40 का आंकड़ा जो है बहुत जल्द टच होने वाला है एंड मिनिमम इज गोइंग टू बी 28. तो कोई और थप्पड़ खाए ना खाए इस वक्त ये सब बातें सोच के सुनने के बाद, लेकिन आपके एसी का रिमोट जो है ना बहुत जोरों का थप्पड़ खाने वाला है. नहीं, हमारे साथ तो ऐसा होता था, जब जब टीवी का रिमोट काम नहीं करता था, हम उसे एक थप्पड़ लगाते थे, काम करने लगता था. एसी के रिमोट पे भी ट्राई करना, जब काम न करे एक थप्पड़ लगाना, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा. मम्मी सोचती थी कि हम ही ठीक है, भैया हम क्या, एसी का रिमोट बिना थप्पड़ लगाए काम नहीं करता, तो हम तो फिर भी इंसान. वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
2: Weather Check, brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813.
0: एक काम करते हैं, इस वक्त आपके कलेजे में ठंडक जो है ना हम ले आते हैं मोहित चौहान की आवाज, फिल्म का नाम जब वी मेट, एंड अगला गाना दिस इज सो सूदिंग. एंड अगर आपको गाना पसंद आए तो एक थैंक यू मैसेज बनता है 5000 1896. इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरन मिर्ची अंशु. एंजॉय दिस नेक्स्ट ट्रैक. फंदी का नाम अंशु.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjetva la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जारी है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM Mirchi 1 Mirchi 1 It's hot.

0: Well, KK की खूबसूरत सी आवाज and what a lovely track it is from the film Jannat. Well, इस प्यारे से गाने को अगर किसने कंपोज किया तो वो है प्रीतम, और इसमें अगर हमें कोई नजर आए तो वो है इमरान हाशमी एंड साथ सोनल चौहान. चलिए जी, ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक बहुत ही एक्साइटिंग से प्रोजेक्ट की जर्नी जरा आप तक पहुँचा दी जाए.
1: मिर्ची अंशु.
0: Well, GCC is gearing up for something really special. Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Isn't it a mithas and spice ka tadka jo ek baar phir se lagne ja raha hai. Yaar, ek zamana tha jab Gulf countries ke beech travel ka matlab hota tha long drives, borders, paperwork and endless highway journeys. Agar aap air route nahi pakad hai, main us situation ki baat kar rahi hu. Lekin ab jo hai na, aap is scenario ko imagine karne ki koshish kare ki bhai Doha se aap train pakde and directly agar aap kahin pahunch rahe hain to wo hai Riyadh या तो फिर दुबई, अबू धाबी, मस्कट, कुवैत, जहां भी आप जाना चाहें एंड वो भी सीधा रेल के जरिए. एब्सोल्युटली हैड इट राइट. द मेगा जीसीसी रेलवे प्रोजेक्ट इज स्लोली बिकमिंग अ रियलिटी एंड अगर रिपोर्ट्स को मानने की कोशिश करें तो तकरीबन 50% से ज्यादा काम जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है विद अ टारगेट टू बिगिन फुल ऑपरेशंस बाय 2030. एंड अब जो है जरा आप इसके स्केल को समझने की कोशिश करिए, ये जो है ये कोई नॉर्मल रेलवे लाइन नहीं है, ये पूरा गल्फ का कनेक्शन है. अ मैसिव रेलवे नेटवर्क ऑफ मोर देन 100 kilometers. Absolutely, you heard that right. जो कनेक्ट करेगा कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, बहरीन एंड कुवैत को. एंड सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि अगर मैं पैसेंजर ट्रेन की बात करूँ तो भाई इसकी स्पीड जो है 200 kilometers per hour से भी ऊपर होने वाली है. मतलब फ्यूचर में अगर आप दोहा से दमान जाने की कोशिश करें तो शायद 1 घंटे का सफर ही, उससे ज़्यादा नहीं. भाई मैं सीधा उस वक्त अगर कहीं पहुँच गई हूँ ना तो अपने रेल जर्नी की तरफ, अगर मैं कॉलेज टाइम्स को याद करने की कोशिश करूँ एंड किस तरह से मेट्रो में हम लटक के जाते थे, यानी जो मेट्रो है हर एक छोटे स्टेशन पर रुका करती थी एंड लगता था भैया आज पेपर है, आज तो जल्दी पहुंचा दो. मैं राजनगांव से रायपुर मुझे ट्रैवल करना हो, क्या दिन थे यार. लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि ट्रेड की बात करें, कार्गो, लॉजिस्टिक्स, इकोनॉमी, सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि फ्री ट्रेन से लेकर पोर्ट्स तक सब कुछ जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा. लेकिन अब ट्रेन में आपको वो आलू की सब्जी और पूड़ी ले जाने मिलेगी या नहीं अचार के साथ, ये मुझे नहीं मालूम. कभी आपने लिया बचपन के दिनों में लंबे सफर में आलू की वो सूखी सब्जी, वो कढ़ाई वाली पूड़ी एंड साथ में अचार? दर्शन रावल की आवाज, रोचक कोहली का साथ एंड अगला प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म धड़क 2. एंजॉय. बिंदी का नाम अंशु.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Well, मैं कहा पाची की आवाज शिफाली अल्वारेस का साथ एंड पावर पैक ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म देसी बॉयज. ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया है, बट टू ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु कनेक्टेड विद मी एट द मोमेंट, अब आपने मुझे कुछ सुनाना है.
1: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajan Show with you. पहचान कौन? नहीं, मुझे तो जानते हो, पहचानते हो, लेकिन अब कोई तो आवाज़ है जो आपके बीच में पेश करने वाली हूँ. आपको सुनना है, फटाफट से पहचानना है, मुझे बताना है कि ये आवाज़ आपने सुनी तो किस फिल्म में सुनी एंड किन दो किरदारों के बीच सुनी. बड़ी एक्साइटिंग सी फिल्म है, इस फिल्म की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी है, पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई है मेरी नहीं, इन एक्टर्स के, वो मैं आपके बीच बाद में बताऊंगी, पहले ज़रा कहानी सुन ली जाए. वेल, अब आपके बीच ये जो डायलॉग मैं पेश करने वाली हूँ, अगर आपने सही सही आइडेंटिफाई कर लिया किस फिल्म से है, सो 5000 1896 में करेक्ट आंसर भेज देना. चलिए एक हिंट दे दूं, अगर कॉन्वर्सेशन से बात समझ ना आए ना, तो एंड में एक म्यूजिक है जो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, आप उसे किसी ना किसी फिल्म से जरूर रिलेट कर पाएंगे. सही आंसर जो है वहां पे मिल ही जाएगा. हिंट चीटिंग करवाई मैंने आपको. राइट, हियर वी गो.
2: थोड़ा सा तीखा है.
3: तीखा खाना तीखी लड़कियों के लिए है, मीठे बुद्धुओं के लिए नहीं.
2: थोड़ा सा तीखा है.
3: तीखा खाना तीखी लड़कियों के लिए है, मीठे बुद्धुओं के लिए नहीं.
0: राइट, यू आप फटाफट से बताएं कि ये बातचीत हुई तो हुई किस फिल्म में, किन कलाकारों के बीच हुई. 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, फटाफट से भेजो यार. मीनवाइल मिट्रास की आवाज एंड ये अगला प्यारा सा गाना आपके लिए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अजय देवगन, फर्ज करते हैं माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर्स केआरके, देयर्स करण जौहर एंड देयर्स काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
2: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
1: Because that's the game. हमको दोनों को तो बचाना ही पड़ेगा.
2: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
1: ऐसा ही हूँ मैं.
2: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
1: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर.
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: खट खट.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you? Who?
4: अरे, whom are you looking for, madam?
5: खट खट. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. Mirchi, fresh maal.
6: Desi swag aur high energy dance vibe ke saath suno. Vyah karwa do ji.

0: गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विवाह करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, इस ब्रांड न्यू ट्रैक को तो हमने एंजॉय कर लिया, लेकिन चलिए नॉस्टैल्जिया में जरा डाइव इन करते हैं। एक ऐसा गाना आपको सुनाते हैं जो 90s के एरा में हमारी जिंदगी में गोल्डन मेमोरीज लाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। Hey, what's up? Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. थोड़ा सा स्पाइस एंड थोड़ी सी मिठास, ये जो है फिल्म हमारी लाइफ में जरूर लेकर आई। वेल, आपसे कुछ देर पहले आपके बीच मैंने प्ले किया एक कॉन्वर्सेशन, एक डायलॉग आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर, बस मुझे ये बताना था कि ये जो डायलॉग हो रहा है ये किन दो लोगों के बीच हो रहा है, बातचीत किसके बीच हो रही है। एक काम करते हैं जल्दी से, फॉर द सेक ऑफ पीपल हैव जस्ट जॉइन, मैं फिर से सुनाती हूँ। अगर आपको लगे कि अभी भी आपने फिल्म का नाम आइडेंटिफाई कर लिया है तो जल्दी से करेक्ट आंसर 5000186 पर भेज ही देना, बाकी जनता आवाम की आवाज तो मैं अब तक पहुंचाऊंगी। सो हियर यू गो। अरे ना ना ना, ये तो सीधा आपके बीच मैंने म्यूजिक के लिए आए भाई, बात तो ये है।
2: थोड़ा सा तीखा है।
3: तीखा खाना तीखी लड़कियों के लिए है, मीठे बुद्धों के लिए नहीं।
1: राइट, यू टीजर तो पहले छोड़ दिया था, फिल्म तो अभी मैंने प्ले की, अब बताइए कि ये टीजर फिल्म आखिरकार किस फिल्म से है। 5000186 मीनवाइल लेट्स सी हमारे लिसनर्स का क्या कहना है।
4: हाय, गुड आफ्टरनून, ये अजहर है, अजहरुद्दीन बात कर रहा हूँ। ये मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम, और ये दोनों जो कैरेक्टर्स है ऐश्वर्या राय और सलमान खान, दोनों के बीच बातचीत हो रही है।
5: Hi RJ Anshu, this is Madhulika calling again. ये दो जो एक्टर,
1: अब बताइए कि ये टीजर फिल्म आखिरकार किस फिल्म से है। 5000186 मीनवाइल लेट्स सी हमारे लिसनर्स का क्या कहना है।
4: Hi, good afternoon, ये अजहर है, अजहरुद्दीन बात कर रहा हूँ। ये मूवी का नाम है हम दिल दे चुके सनम, और ये दोनों जो कैरेक्टर्स है ऐश्वर्या राय और सलमान खान, दोनों के बीच बातचीत हो रही है।
5: Hi, RJ.

0: Dil De Chukke Sanam. I have to say it's my all-time favorite movie in terms of the storyline and the music. It's just mind-blowing. Thank you.
1: The name of the movie is Hum Dil De Chukke Sanam, directed by Sanjay Leela Bhansali. And this is the voices of Aishwarya Rai, and he is telling to Salman Khan. Thank you.
2: Absolutely, aap sabne jo kaha ye puri tarah se sahi, one of the most talked about love stories. Taaliyan ho jaye yaar. देखिए बात इतनी है कि 1999 का वो दौर जब बॉलीवुड ने हमें एक ऐसी लव स्टोरी दी जिसमें प्यार भी था, पेन भी था एंड साथ सैक्रिफाइस का वो एहसास जो आज तक दिल को टच करता है, तो उस फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। इट वॉज 18th of June 1999 जब ये फिल्म रिलीज हुई, जिसे डायरेक्ट किया संजय लीला भंसाली ने एंड प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। स्टार कास्ट: सलमान खान एज समीर, ऐश्वर्या राय एज नंदिनी एंड अजय देवगन एज वनराज। म्यूजिक दिया था इस्माइल दरबार ने एंड लिरिक्स लिखे थे महबूब कोटवाल ने। सच कहूं यार, इस फिल्म के हर एक गाने ने ना भाई हमारे दिल को जरूर छुआ है, भाई डीपली छुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए। देखिए कहा जाता है कि सलमान और ऐश्वर्या की रियल लाइफ लव स्टोरी भी इसी फिल्म के सेट्स पर ब्लॉसम हुई। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी रियल थी, शायद इसीलिए कहानी जो है कैमरे पर उभर कर इतनी खूबसूरत तरह से आई। लेकिन लेटर ऑन देयर रिलेशनशिप बिकेम वन ऑफ द बॉलीवुड्स मोस्ट टॉक अबाउट रिलेशनशिप एंड रोमांसेस एज आई राइटली मेंशनड, बट द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन फिल्म के असली मैजिक की अगर मैं बात करूं तो यार वो कॉन्वर्सेशन थी, वो डायलॉग जब नंदिनी समीर से कहती है कि समीर तुमने मुझे प्यार करना सिखाया लेकिन वनराज ने मुझे प्यार निभाना सिखाया। क्या बात थी यार, इतनी आसान सी बात इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में कह देना। वैसे अक्सर लव स्टोरीज जिनका एंड किसी और शादी में होता है बाद में यही कहा जाता है। उदित नारायण की आवाज़ अलका याग्निक का साथ। जाने से पहले ही प्यारा सा गाना आज मैं आपको सुनाते हुए जाऊँ, मजा आया, खूब मजा आया, तो भाई एक थैंक यू मैसेज मेरे लिए बनता है। 5000186 5000186। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम। मिर्ची वन का तरिया मिर्ची अंशु, जाओ भाई अच्छा अच्छा खाना खाओ एंड लौट के फिर वापस हमारे पास आओ। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: आजकल हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि फोन में देखकर बात कर, नहीं तो बॉस पकड़ लेगा। लेकिन हाँ, स्कूल में हम ऐसे जरूर बात किया करते थे कि बुक में देखकर बात कर, नहीं तो टीचर देख लेगी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And well, ये बात सच है कि ऐसा भी एक जमाना हुआ करता था जिसे अब हम शायद ही जी पाएंगे, जहां हम अपने दोस्तों से इस तरीके की बातें किया करते थे ताकि टीचर्स हमें पकड़ ना लें, उनको लगे कि हम पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, लेकिन हम एक्चुअली एक दूसरे की कॉन्वर्सेशन को लेकर सीरियस होना चाहते थे। तो किताब, जो यूजुअली हमारे लिए ऑप्शन नहीं हुआ करता था, आई मीन पीरियड खत्म होने के बाद या घर जाने के बाद, वी नेवर वुड want to open a book and talk to each other, but हाँ, of course, अपने आप को बचाने के लिए, so that हमें punishment ना मिले, डांट ना पड़े और हम बात भी कर पाएं और मैम को भी लगे कि यार हम पूरा ध्यान दे रहे हैं अपनी किताब के अंदर। बुक यूज टू बी आर ऑप्शन, बेसिकली बुक यूज टू बी आर एस्केप। हाँ, लेकिन फोन हमारा एस्केप कभी नहीं बन सकता। फोन वो साथी नहीं जो किताब हुआ करती थी बाबू मुशाय। ये उन दिनों की बात है जब हम बुक रीडर्स हुआ करते थे, अब तो हम टैब रीडर्स और फोन रीडर्स हो गए हैं। तो फिर चले क्या उसी जमाने में, मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल दूं? आपसे बोल देती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Deșteptate Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: Motor se bol rahe hain?
2: Haan ji.
3: Madam, please kisi mechanic ko bula denge, meri gaadi out of control ho gayi hai.
2: Theek hai sir.
3: 5 second jaldi.
4: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: प्लीज जल्दी बुला लो।
2: सॉरी, कोई कस्टमर के लाए हेलो
3: हेलो
2: बात
3: होल्ड नहीं कर सकता। हेलो
5: हाँ जी सर।
3: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
3: एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड
5: सर, हैंड ब्रेक खींच दो सर।
3: एक सेकंड रुकिए
5: सर, साइड में लेफ्ट साइड में।
3: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
5: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
3: इग्निशन एक सेकंड रुकिए, ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
5: हाँ जी।
3: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
5: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
3: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
5: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
3: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
5: हाँ जी।
3: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
5: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
3: क्या करूँ?
5: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
3: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए।
5: क्या हो गया?
3: आए, गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुक गई।
4: मैडम क्या नाम है आपका?
2: दिव्या।
4: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
2: Oh,
6: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ देने वाली ये जो अदा है ना, आपको क्या लगता है गदर से आई है? अजी नहीं, इसकी शुरुआत तो बॉर्डर मूवी से ही शुरू हो गई थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड सनी देओल, बाय गॉड, पग में इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैं तो तब बच्ची थी जब बॉर्डर रिलीज हुई थी, लेकिन एक पल के लिए मेरे दिल में भी ख्याल आया, यार ये तो हैंडसम है हीरो। और बॉर्डर में सनी देओल के वो जो पावरफुल डायलॉग्स थे और उस पे उन्होंने जो अपनी एक्टिंग का पावर लगाया था, वो इतने लेजेंडरी बन गए कि उनकी एक इमेज बन गई ऑफ अ पेट्रियोटिक हीरो। और वहीं से शुरू हुआ उनका हैंडपंप उखाड़ देने वाला सफर, गदर से नहीं। लेकिन सनी देओल ने मेहनत भी बहुत की थी। हाँ, उन्होंने रियल आर्मी ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग ली थी सो दैट ही कुड गेट इनटू हिज कैरेक्टर, स्पेशली टैंक ऑपरेशंस और कमांड्स के बारे में जानने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी थी एंड उस कोशिश में सफल भी हुए थे। जहां सनी देओल ने अपना कैरेक्टर पकड़ने के लिए इतनी मेहनत करी थी, वहीं अक्षय खन्ना, जिनकी ये दूसरी फिल्म थी, उनको बड़ी डिफिकल्टी हुई थी शूटिंग करने में, स्पेशली इमोशनल सीन्स, क्योंकि उस टाइम पर वो मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे। आज की बात तो अलग है, लेकिन एट दैट टाइम उन्होंने उनका जो डेथ सीन था ना, उसको शूट करने के लिए काफी सारे टेक्स लिए थे क्योंकि वो उस कैरेक्टर में आ ही नहीं पा रहे थे यार, बट इवेंचुअली आ गए। एंड उनका डेथ सीन एज वेल एज सुनील शेट्टी का डेथ सीन इन द मूवी वॉज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग यार। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो बॉर्डर देखा होगा और रोया नहीं होगा। इस मूवी को नेशनल लेवल पे इतनी तारीफें और अप्लॉड्स मिले थे फॉर प्रमोटिंग पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल यूनिटी कि इस फिल्म को इवेंचुअली काफी सारे इंडियन स्टेट्स में टैक्स फ्री कर दिया गया था। वो अलग बात है कि तब हमारे घर वाले जो थे वो हमें थिएटर में ले जाकर मूवीज नहीं दिखाते थे और ज्यादातर हम VCR पे ही मूवी देखते थे, तो हमने ये फिल्म भी VCR पर ही देखी, टैक्स फ्री एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, ये फिल्म सबने जरूर देखी है। You tune in with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Hello shops. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine baba ji se advice li to kehte hain,
2: office ke toilet mein toilet paper white nahi yellow lagao, profit aayega.
1: Relative se advice slow to kehte hain,
3: kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
1: Isiliye main aapke paas aaya hu promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
4: Bhai kya kar raha hai tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
5: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपको पता है border movie is actually based on real life events?
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ये बात सच है कि border film was inspired by the Battle of Longewala, जो कि 1971 में लड़ी गई थी. और इस फिल्म की इंस्पिरेशन इनफैक्ट जेपी दत्ता की पर्सनल लाइफ से भी आती है. जेपी दत्ता ने ये फिल्म बनाने का सोचा एज अ ट्रिब्यूट टू हिज ब्रदर, जो कि 1971 की इस वॉर में शहीद हो गए थे. और इस फिल्म को जितना ऑथेंटिक हो सके उतना ऑथेंटिक बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने इंडियन आर्मी वेटरन्स जिन्होंने इस बैटल में फाइट लड़ी थी उनसे कंसल्ट किया था. इनफैक्ट प्रोडक्शन टीम ने जो यूनिफॉर्म्स और टैंक्स लिए थे ना, वो भी रियल आर्मी वाले यूनिफॉर्म्स और टैंक्स थे. हालांकि इस फिल्म की जो कास्ट थी वो बहुत बड़ी थी. सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, पूजा भट्ट, सो मेनी एक्टर्स. और इनके अलावा और भी कई सारे मंजे हुए खिलाड़ी थे अपनी अपनी फील्ड के, यानी कि एक्टिंग के, जो कि इस फिल्म में कास्ट किए गए थे. लेकिन जिस चीज ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस हिट बनाया था, दैट वॉज द डेडिकेशन एंड द ऑथेंटिसिटी एंड द पेट्रियोटिज्म. इस फिल्म की शूटिंग हुई थी राजस्थान बीकानेर में, जहां पर गर्मी और सैंडस्टॉर्म्स इतने खतरनाक होते हैं, यानी वो टाइम था जब वैनिटी वैन्स भी नहीं हुआ करती थी. लेकिन स्टिल द कास्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म, उन्होंने इन सारी सिचुएशंस में भी इस फिल्म को शूट किया. क्योंकि जब वॉर चलती है ना, तो वो गर्मी, सर्दी, बारिश ये सब नहीं देखती है. हमारे सोल्जर्स डटे रहते हैं टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री. और उसी जोश के साथ इस फिल्म को भी शूट किया गया था. एंड इवेंचुअली बॉर्डर ने 3 नेशनल अवार्ड्स जीते थे. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, नहीं अभी टाइम नहीं मिलता है, और दूसरी बात अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Bhatt.
6: Bhatt? Are Bhatt who?
5: Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt. Bike bahut awaaz karti hai.
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज मम्मा हमें टोकती तो हैं कि ये क्या सुबह सुबह फोन उठा लेते हो. एंड एक्चुअली सुबह सुबह फोन उठाना तो इतना मजेदार नहीं है, लेकिन सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले MTV देखना, वो होता था असल मजेदार. तो
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड सुबह सुबह अगर आपकी शुरुआत जो है वो म्यूजिक से हो तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता. हालांकि उस जमाने में भी मम्मा बुरा माना करती थी कि स्कूल जाना है, ये क्या टीवी चला के नाच गाने देख रहे हो तुम लोग, ऊपर वाले का नाम लेकर दिन की शुरुआत किया करो. लेकिन नहीं जी, हमें तो MTV देखना होता था. आंखें खुली हो या हो बंद, हमने देखना होता था लक्की अली को. कभी कभी किस्मत अच्छी होती थी तो शकीरा भी दिख जाया करती थी. लिंकिन पार्क, ये हमने MTV देख देख कर समझाए कि कौन है लिंकिन पार्क, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं होता यार. अलार्म तो भाई सिर्फ नाम का हुआ करता था, असली अलार्म तो हमारे लिए MTV था, क्योंकि हमारी आंखें MTV से खुलती थी. और यही नहीं, स्कूल से आने के बाद भी हाल यही था कि स्कूल से आते के साथ ही बैग एक तरफ और MTV फिर से चालू. कपड़े बदलते वक्त भी ना नजरें हमारी टीवी पर ही रहती थी, जैसे कोई वीडियो मिस हो गया ना तो पूरी दोपहर ही हमारी अधूरी रह जाएगी. आज हालांकि सब कुछ ऑन डिमांड हमें मिल जाता है, एट द क्लिक ऑफ अ बटन हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा वीडियो देखना है, लेकिन उस वक्त हर वीडियो का इंतजार हुआ करता था. हर सुबह हर दोपहर MTV में अलग ही जादू हुआ करता था. और MTV के वो VJs, शहनाज ट्रेजरी वाला, मारिया गुरेटी, मलाइका अरोड़ा, साइरस, एंड दैट टू टू टाइप्स ऑफ साइरसेस. हां, सो मेनी यादें यार जो MTV से जुड़ी हुई है. सीरियसली मतलब MTV देखना वाज नॉट जस्ट कूल बट आल्सो मूड चेयर अप करने के लिए, समा बांधने के लिए MTV काम आता था फुल. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na
1: pierdva la burka. Milci, burka. Hello.
2: Hello, bhai Santosh se baat kar raha hu meri.
1: Main bol raha
2: hu. Haan ji, bhai Santosh yahan थाने से बोल रहा हूँ, आपको थाना आना पड़ेगा।
1: क्यों?
2: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
1: गए थे जी।
2: आपने धरने पे बैठे थे आप?
1: जी बैठे थे।
2: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी तीन लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
1: हाँ बताओ, जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
2: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई, कैसा? मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
1: जी जी गए थे जी।
2: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
1: जी जी।
2: आपके पड़ी लाठी कोई?
1: मेरे तो नहीं पड़ी।
2: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार, तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
1: सर आप नाराज क्यों?
2: नहीं नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ
1: सर। अपने दोस्तों के कहने पे गया था, बहुत दूर था लाठी।
2: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई, बहुत दूर थे,
1: बहुत दूर था
2: भाई। तने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप, आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
1: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
2: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, तीन लाठी रजिस्टर पे चलाइए, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
1: सर नाराज क्यों है?
2: नहीं
1: तो
2: नाराजगी की तो बात है,
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
2: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, तीन लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई।
1: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
2: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं? मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था, उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है,
1: वो
2: बहुत दूर था, नाराज वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ। संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
3: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट,

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्य राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार एक बात बताओ, ये फ्रिल्स में इतना थ्रिल क्यों हुआ करता था बैक इन द 90s?
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। यार आज के बच्चों का फैशन देखती हूँ ना, तो आई वंडर कि ये कितने सिंपल तरीके से तैयार होते हैं यार। आई मीन कितनी डिसेंट तरीके से ये बच्चे तैयार होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई बड़ा ही तैयार होके आया हो। लेकिन हमारे दौर में, हमारे बचपन में, भाई वी नेवर यूज टू कॉम्प्रोमाइज विद अ ड्रेस जो कि बिना फ्रिल्स की होती थी। अब भले से ही हम बहुत ज्यादा गॉडी लगते हो, ऐसा लगता हो कि हमने जो पहना है वो बहुत ही ओवरडन है और इतने फ्रिल्स की जरूरत नहीं है, जो भी रीजन हुआ करता होगा फैशन का उस टाइम पर, लेकिन मुझे तो मेरे वार्डरोब में फ्रिल्स चाहिए होती थी। ये फ्रिल जो थ्रिल था वो क्यों था, ये मुझे आज भी नहीं समझ में आया। मतलब मेरी चॉइस का क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल हुआ करता था। सॉक्स में फ्रिल, फ्रॉक्स में फ्रिल, हेयर बैंड में फ्रिल्स, और अगर सैंडल में फ्रिल्स मिल जाए ना तो लाइफ वाज चिल। आई वाज अ फैन ऑफ फ्रिल्स यार, और यही आज मैं हूँ जिसे ये सब कुछ ना बड़ा ओवर लगता है। आज वो दौर है व्हेन लेस इज मोर, और वो दौर था जब मोर वाज लेस। बड़ा मजा आता है ये सोच के कि दोनों ही दौर में बड़े अच्छे तरीके से जी रहे हैं हम। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on मिर्ची, it's hot।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: नहीं! बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल, ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाय।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke, there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai. And inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और ये
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कट कट।
6: Who that?
5: जस्सी।
6: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
5: जस्सी who has come, आंटी जी?
6: कट कट। Who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन।
3: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: वेल इन अ वर्ल्ड जहाँ पर जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस की शादी होती है तो हमें ये पता होता है कि उस इंसान ने अपने हल्दी मेहंदी पे क्या पहना, अपनी शादी में क्या पहना, रिसेप्शन में क्या पहना और क्या क्या फंक्शंस हुए. यू नो एवरी डिटेल वी गेट टू सी एंड नो ऑन इंस्टाग्राम या फिर मीडिया तो है ही कवर करने के लिए. लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी शादी है जिसके बारे में आज तक किसी आउटसाइडर को कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि रानी के लहंगे का कलर क्या था. यार
2: ये है नब्बे की गप्पे.
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड यस, रानी मुखर्जी एंड आदित्य चोपड़ा की जो लाइफ है और उनकी जो शादी है ये आज तक नहीं पता लगा कि चल क्या रहा था और क्या चल रहा है. ये दोनों ही इतने प्राइवेट लोग हैं ना. वेल आई रियली लाइक दिस अबाउट देम एज वेल. लेकिन हाँ, एक डिटेल जरूर पता लगी है रिसेंटली. सब्यसाची ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को जाहिर किया, जग जाहिर कर दिया इनफैक्ट, कि यू नो यूजुअली ही वर्क्स फॉर एक्ट्रेसेस, उनके लहंगे, उनका ब्राइडल कुटोर एंड एवरीथिंग. लेकिन बहुत टाइम पहले से ही सब कुछ पता होता है तो उनके पास टाइम होता है टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. लेकिन रानी मुखर्जी की शादी जो थी वो बड़ी चैलेंजिंग थी उनके लिए, बिकॉज देयर वाज दिस वन डे व्हेन रानी मुखर्जी जस्ट वॉक्ड इन टू हिज बुटीक एंड यू नो शी जस्ट सेड रैंडमली कि यार 5 दिन के अंदर तुम्हें मेरा लहंगा बनाना है एंड ये लहंगा मेरी शादी का लहंगा है. एंड यू नो दैट टाइम वॉज अ टाइम फॉर सब्यसाची विच वॉज क्रेजी एंड चैलेंजिंग एज वेल. लेकिन उन्होंने ये भी कहा इसी बात के साथ कि सबसे ज्यादा मजा भी इसी काम में आया क्योंकि इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड एंड ही वॉज डूइंग सम वर्क जो कभी कहीं नजर ही नहीं आएगा. उन्हें ये बात पता भी नहीं थी क्योंकि आगे जाके आज तक भी किसी को नहीं पता कि यार रानी मुखर्जी असल लाइफ में दुल्हन बनकर कैसी लगी होंगी. आई एम श्योर जस्ट लाइक हाउ शी लुक लाइक अ ब्राइड इन हर मूवीज एक्टिंग करते हुए. लेकिन हाँ, वो जो चेहरे पर एक ब्लश होता है, एक चमक होती है, एक शर्माने वाली अदा होती है, वो थोड़ी एक्स्ट्रा निकल कर आई होगी और नेचुरली निकल के आई होगी. You tune in with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
1: गुड इवनिंग
2: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
1: ओके
2: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं. हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
1: फोर.
2: वेट सर, वेट.
1: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है
2: सर? यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है. अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
1: डर जाएगी.
2: गुड सर, वेरी गुड सर.
1: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
2: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं. हम तो जान के आसान.
1: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
2: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है? और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं. बड़ों वाले
1: पूछो यार.
2: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
1: पूरे 100.
2: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण मा भाई पोषण पा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
1: जेल में जाना पड़ेगा.
2: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
1: समझा नहीं मैं.
2: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
4: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Silvatta,
2: Yado ko chitti.
1: लाल मेरे दिल का हाल था और लगता तुम पर कमाल था। मेरी नानी के घर में तुम लाल रंग के थे और मैंने तुम्हें उसी रंग से पहचाना है। हालांकि लेटर ऑन मुझे पता लगा कि तुम टैंड लुक यानी कि ब्लैक कलर में भी आते थे। एनीवेज इट्स नेवर अबाउट द कलर, लेकिन इट वाज डेफिनेटली अबाउट हमारे घर का खाना जो तुम पर मसाले पिसने के बाद स्वाद में निकल कर आता था विद फ्लाइंग कलर्स। तुम्हारी वो भारी भरकम पर्सनालिटी जो रसोई के एक कोने में टिका करती थी और हर सुबह कामवाली मासी तुम पर नाना अब्बा के लिए ड्राई फ्रूट्स पीसा करती थी। उस टाइम पर तो रसोई में तुमसे ज्यादा कोई बिजी नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक बार ड्राई फ्रूट्स का काम हो जाता था उसके बाद फिर मसाले पीसे जाते थे और फिर फ्रेश चटनी। ओए होए, तुम्हारे ऊपर पिसी हुई धनिया, मिर्ची, लहसुन, इन सब की खुशबू ना आज भी मेरी नाक में बसी हुई है। वो टेस्ट जो तुम्हारे हाथों से निकले मसालों में होता था, आज की मिक्सी वाले मसालों में कहाँ होता है यार। हालांकि आज अगर ये बात कोई मर्द कह दे तो उसे एंटी फेमिनिस्ट कहा जाएगा, जबकि मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ टेस्ट की बात है यार। जब मम्मा तुम्हारे ऊपर चटनी पीसा करती थी ना, तब हम बच्चे पास में बैठकर उंगलियां चाटते थे और इंतजार करते थे कि कब एक कटोरी चटनी मिले। तुम्हारे साथ वो टेस्ट और वो घटघट वाली आवाज भी चली गई यार, जो अब कभी लौट कर तो नहीं आएगी। तुम सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं थे, तुम रसोई घर की रूह थे और तुम्हारे टाइम पर किचन को हम रसोई घर ही बोला करते थे। शायद तुम्हारा पर्सनल टच एक कमरे को घर का एहसास दे देता था। तुम्हारे आसपास न जाने कितनी बातें, कितने गाने, कितनी कहानियां गूंजा करती थी। आज जब सब कुछ मशीनों ने टेक ओवर कर लिया है ना, तब तुम्हारी सादगी और अपनापन बहुत याद आता है। तुम्हारे पिसे हुए स्वाद को याद कर दी तुम्हारी फूडी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। और ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की आवाज में ताल मूवी से ये गाना इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: ये आवाज इस गाने में आदित्य नारायण ने निकाली थी और वो जो बच्चे का जितना भी पार्ट है ना वो सब आदित्य नारायण ने गाया था। सोचो जरा, ये भी कभी इतने छोटे हुआ करते थे। लेकिन इस गाने की बड़ी सही बात ये है कि ये जो गाना है ना ये बिल्कुल सच बोल रहा है यार, कि यार कहीं आग लगे लग जाए, कहीं नाग डसे डस जाए, लेकिन ये जब दिल टूटता है ना और इसमें जो दर्द होता है ना वो नहीं सह सकता यार इंसान। बाकी सारी चीजें तो हम झेल लेते हैं वाकई में, ऑन अ डेली बेसिस कितने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब हार्ट ब्रेक होता है ना तो बाय गॉड दुनिया रुक जाती है यार, किसी के लिए कुछ महीनों के लिए, किसी के लिए कुछ दिनों के लिए, तो किसी के लिए कुछ सालों के लिए। और कुछ तो ऐसे भी हैं यार जो एक चक्के में पूरी जिंदगी के लिए अटक के रह जाते हैं। भले ही उनके लिए दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन वो जो मोहब्बत उन्होंने कभी की थी ना सच्चे दिल से और जिसमें उनका दिल टूटा था, वो आज तक रिपेयर जोन में नहीं आ पाया है, बस जीना सीख लिया है। तभी तो कहे कि जाए जा ना जाए जिया। यार ये बात तो मैं भी कहती हूँ कि यार जान चली जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दिल गया ना भाई तो बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। दुनिया कैसी हो जाती है यार, क्योंकि क्या है ना कि प्यार खूबसूरत भी बहुत होता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो एक डर होता है, और यू नो कभी कभी ऐसा होता ही है हमारे साथ कि यार वो डर हमारा सच हो जाता है, तो वो दर्द भी होता है, यानी कि डर दर्द में तब्दील हो जाता है। ओए होए होए होए होए होए, ऑल द बेस्ट है जी अगर आपने नया नया प्यार किया है, एंड ऑल द बेस्ट टू दोज एज वेल जो ऑलरेडी प्यार से डील कर रहे हैं, जो उतार चढ़ाव से डील कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि प्यार से डील करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ब्रेकअप से डील करना थोड़ा मुश्किल है। ऑल द बेस्ट टू यू। और इसी के साथ जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
3: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन

0: 17,000 crore की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: खट खट,
4: हू देयर?
3: अगर कर,
4: अगर कर हू,
3: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे.
4: खट खट, हू देयर?
2: Only on 89.6 Mirchi 1.
5: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: अरिजीत सिंह की आवाज में इस गाने का असर भी गहरा हुआ और धीरे धीरे गाड़ियों पर गर्मी का असर भी गहरा हो रहा है। मतलब दिन के टाइम जैसे ही आप गाड़ी बैठी तशरीफ एकदम से गर्मा जा रही। दोस्त बस इतना ही कहना चाहते हैं, भयंकर गर्मी शुरू हो चुकी है। वैसे दोपहर के 4:03 हो रहे हैं।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: और आ गया है मस्तमौला गौरव बातों की दुकान लेकर, जहां पर बहुत सारे सामान है जो आपके सामने परोसे जाएंगे। जैसे आपको पता लगेगा कि कैसे 2026 वर्ल्ड कप के लिए कतर ने अपनी प्रिलिमिनरी लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है, एंड इसमें पूरे के पूरे 34 खिलाड़ियों का नाम आ गया है। दोहा मेट्रो कौन सी नई रूट पर कौन सी नई बस चला रही है, एंड कतर कैलेंडर हाउस ने क्या कहा इस बार ईद अल अधा के लिए क्या डेट है, जीसीसी का रेलवे प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, ओल्ड दोहा पोर्ट फिशिंग कैसे होने वाली है, आप कैसे प्राइजेस जीतेंगे, सब कुछ यहीं पता लगेगा। और अगले 4 घंटों तक आपको मेरे साथ सिर्फ क्या देना है, ध्यान और कान। हाँ जी, अपना कान हमारी तरफ दे दो और वॉल्यूम बढ़ाई लो, मिर्ची लगाई लो भैया, बहुत सारी बातें बताएंगे और अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे ताकि एंटरटेनमेंट का तूफान आपकी जिंदगी में बिल्कुल न थमे, मिर्ची के साथ चलता रहे आगे। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल
3: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and the Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
7: यार बजट ही बन रहा है, प्राइसेस देखिए, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
8: मैंने बोला था ना मई 12th का वेट कर।
7: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
8: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है, 12th to 18th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
7: किलर ऑफर्स, मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
8: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
9: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
10: बार बार।
5: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
11: 89.6
5: FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

बस यूँ समझ ली कि अब घर के बाहर नहीं आती लेकिन कतर के कोने कोने में मिल जाती है। अरे दोहा मेट्रो से जुड़ी मेट्रो लिंक की बात कर रहा हूँ। मेट्रो लिंक एंड मेट्रो एक्सप्रेस सर्विसेज में गोल्ड लाइन में एक इजाफा हुआ है। स्पोर्ट्स सिटी और अल सुडान मेट्रो स्टेशन वालों आपके लिए है ये #974974 हम आपको बता दें कि एक नई मेट्रो लिंक एंड मेट्रो एक्सप्रेस जो है वो अब ऑपरेट करेगी गोल्ड लाइन के बीच में, यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी से लेकर अल सुडान मेट्रो स्टेशन के बीच। और ये न्यू रूट संडे में 10 से ही शुरू हो गया है, आपको बताया जा रहा है। मेट्रो लिंक सर्विस नंबर M307 ये अल सुडान स्टेशन के एग्जिट 1 से लेकर स्पोर्ट्स सिटी के साथ साथ सलवा रोड नॉर्थ की तरफ भी आपको लेकर जाती है। और ये M308 जो है ये बस रूट अब स्पोर्ट सिटी स्टेशन एग्जिट 5 से अल सुडान मेट्रो स्टेशन ये भी सलवा रोड साउथ की तरफ से आएगी। याद रखिए सलवा रोड नॉर्थ पर M307 एंड सलवा रोड नॉर्थ पर आपको साउथ पर ये मिलेगी M308। स्पोर्ट सिटी से अल सुडान मेट्रो स्टेशन आना जाना हुआ और भी आसान। एंड जिस हिसाब से ये गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ मेट्रो लिंक एक्सप्रेस पहुंच रही है, मुझे लगता है दोस्तों वो टाइम भी दूर नहीं जब हम कहेंगे हमारे घर के बाहर भेज दो और वहां भी आ जाएगी। वैसे बहुत परफेक्टली प्लान्ड है एंड आपको जगह जगह बस स्टॉप दिख जाता है। ये हमारे कतर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सबसे सस्ते में पूरे कतर के कोने कोने को घूम सकते हैं आप। एक दिन का मैक्सिमम 6 रियाल और आपके सफर हुआ आसान। तो बस मस्त मौलो गौरव यही कहेगा, डे पास पे यकीन करो और अगर मंथली ज्यादा यूजेस हैं तो भाई बनवा लो अपना मेट्रो कार्ड एंड घूमते रहो कतर में दिन रात। 89.6 मिर्ची 1 मेट्रो एक्सप्रेस एंड 2 मीटर है ना, इट्स हॉट।

0: ठिया।
1: हाँ जी, तो एथिया नहीं आ रही है छुट्टियों की वाह।
2: मस्त मौला गौरव 89.6 पर
1: अगर सब कुछ ठीक रहा तो भाई हम आपको बता दें, कतर कैलेंडर हाउस के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 27 मई ईद अल अधा की शुरुआत जो है वो हो जाएगी।
3: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
1: यस, वो आखिरी महीना हिजरी कैलेंडर का धू अल हिजा 1447 वो आपके लिए शुरू हो चुका है। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस बता रहे हैं 27 मई से आप ईद अल अधा सेलिब्रेशन में आ जाएंगे, वहीं 18 मई से इस आखिरी रमादान से धू अल हिजा महीने की शुरुआत होगी। और ये 12th एंड फाइनल मंथ ऑफ इस्लामिक लूनर कैलेंडर होता है और ये सबसे होलीएस्ट पीरियड होता है इस्लामिक कैलेंडर में। एंड आई एम श्योर जो भी लोग हज पर जा रहे हैं फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस ईद अल अधा के दिन, हम सब के लिए दुआ कर कर आएंगे एंड दुनिया में अमन चैन शांति हो इसका पैगाम भी जरूर साथ लाएंगे। इन सब के बीच में आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कतर कैलेंडर हाउस डॉक्टर फैसल अल अंसारी, उन्होंने बताया है कि अगर सब कुछ सही रहा तो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारे कतर में ईद अल अधा का जो सेलिब्रेशन है वो वेंसडे मई 27 को शुरू होगा। चलिए जी, मैं कहता हूं जब भी फेस्टिवल आते हैं अपने साथ खुशियां लाते हैं और हम लोगों के लिए छुट्टियां भी लाते हैं, इंजॉय करेंगे, दोस्तों यारों के दावत निपटाएंगे और मिर्ची सुनते रहेंगे क्योंकि गानों की ईदी आपको यही मिलेगी। मिर्ची इट्स हॉट।
4: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: कलंक तो नहीं पर काला जरूर कर देता है ऐसा मौसम। अरे स्पेशली दोपहर के टाइम सनस्क्रीन लगा के निकलिए भाई, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है दोस्तों अभी बहुत कुछ सहना है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: यस आरएसएल ग्रुप वेदर चेक, जहां पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दिन का मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा चुका है, आज का मैक्सिमम 41 पहुंचा, मिनिमम अराउंड 28 आएगा। हवाओं की रफ्तार सुबह काफी ज्यादा बनी हुई थी लेकिन अभी की बात करें तो ये धीरे धीरे कम जरूर हुई है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। अगले कुछ दिन तक अब मौसम ऐसे ही 40 डिग्री के आसपास, एंड आने वाले टाइम में ये गर्मी बढ़े हमें अपने पीने के पानी का पारा भी बढ़ा देना है। ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, दिन के टाइम कहीं निकल रहे हैं तो पर्याप्त तरीके से ग्लासेस लगाइए, अच्छे से अपने आप को कवर रखिए ताकि आपकी ये टैनिंग बिल्कुल ना हो। इस उम्मीद में कि आप अब समर्स में अपना बहुत ख्याल रखेंगे और गाड़ियों का भी। मस्मोला गौरव आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची वन, मिलेगी भाई गानों की बहुत सारी मौज यहां मिलेगी। इट्स हॉट
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। MK आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अल वक्रा, अल जनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424240। MK आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
4: कौन है?
5: स्टेन।
4: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे बैंड को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
6: खट खट,
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: गया दिल ले गया। करण औजला के आवाज में गाना सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: और जब मैं आपके साथ हूँ तो फिर आप फिगर नॉट, क्योंकि घड़ी का टाइम तो हम ही बताते हैं और आपको घड़ी की तरफ देखने नहीं देते। 5:03
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: चलिए जी, दिमाग की तंदुरुस्ती दिखाइए और मेरे साथ पहचानिए।
3: पहचान कौन?
0: एक आवाज आएगी, आपको बताना है कि ये किस एक्टर की आवाज है।
4: देखो, डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है, और दूसरी बात है पैसे। तो मैं दोनों से खुश था और जो रोल था वो बेहतरीन था।
0: हाँ जी, ये दोनों से खुश थे और रोल भी बेहतरीन था। बताइए 5000196 पर, क्या माँ गौरव ये जो आवाज सुनाई है ये तो फला साहब की है।
4: देखो, डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है, और दूसरी बात है पैसे। तो मैं दोनों से खुश था और जो रोल था वो बेहतरीन था।
0: 5000196 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए, कॉल नहीं करना है, बस वॉइस नोट में अपना जवाब भेजना है, ताकि कतर के टॉप 8 आंसर्स आज मैं सुना दूं। 8 लोगों के सबसे पहले जिसके भी मैसेज आएंगे मैं बता दूं। यूसुफ भाई और 2 लोगों ने अभी तक मैसेज कर दिया है, लेकिन आपको वॉइस नोट भेजना है अपने जवाब का। सो दोनों भाई लोग, आप जितनी जल्दी हो सके, पप्पू साफी भाई, यूसुफ भाई, वॉइस नोट में अपना जवाब भेज दीजिए, क्योंकि आप दोनों का टॉप 2 में आया है एक और आंसर और सब लाइन से आने शुरू हो गए। चलिए जी, 5000196 पर बताइए ये क्या जवाब है जिसकी आवाज मैं सुना रहा हूँ, ये कौन से एक्टर है।
4: देखो, डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है, और दूसरी बात है पैसे। तो मैं दोनों से खुश था।
0: 5000196 पर आपके जवाब का इंतजार करता मस्त मौला गौरव। जितनी जल्दी हो सके अपना जवाब भेजिए, तब तलक जब तलक गाना अरिजीत सिंह का कासा की आवाज में सुनिए मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Yes.
4: Motor se bol rahe?
3: Haan ji.
4: Madam, please, kisi mechanic ko bula denge. Meri gaadi out of control ho gayi
3: hai. Theek hai, sir.
4: 5 second, jaldi.
5: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: प्लीज जल्दी बता दो
3: मुझे। सर ये कोई कस्टमर के लाए। हेलो
4: हेलो होल्ड नहीं कर सकता। हेलो
6: हाँ जी सर।
4: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
6: सर पे हैंड ब्रेक खींच दो।
4: एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड
6: सर, हैंड ब्रेक खींच दो सर।
4: एक सेकंड रुकिए
6: सर, साइड में लेफ्ट साइड में।
4: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज खाता था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
6: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
4: इग्निशन एक सेकंड रुकिए, ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
6: हाँ जी।
4: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
6: ऐसे मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
4: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
6: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
4: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
6: हाँ जी।
4: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
6: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
4: क्या करूँ?
6: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
4: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए।
6: क्या हो गया?
4: आए, गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुक गई।
5: मैडम, क्या नाम है आपका?
3: दिव्या।
5: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
3: I was so tense, I thought what
2: happened. मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची It's hot.
7: यार बजट टीवी बन रहा है, प्राइसेस देखे, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
8: मैंने बोला था ना, मई 12th का वेट कर।
7: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
8: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में। मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है, 12th to 18th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
7: किलर ऑफर्स। मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
8: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
9: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आने जाने को कौन रोकता है दोस्त, जो आया है उसको तो एक दिन जाना ही है। रोकते तो सिर्फ लोग उसे हैं जिसे वाकई में पसंद करते हैं कि अरे भाई दो कप चाय और हो जाए एक साथ, उसके बाद ही जाओ। अरे इतना नाम मत लो हमारा, हम फिलहाल आपके साथ इस घंटे खेलते हैं वो जिसे कहते हैं पहचान कौन। में एक आवाज सुनाता हूँ और पूछता हूँ बताओ ये किसकी आवाज है।
1: देखो डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है, और दूसरी बात है पैसे, तो मैं दोनों से खुश था और जो रोल था वो बेहतरीन था।
0: अब जब रोल बेहतरीन है तो बताओ ये बेहतरीन इंसान कौन है।
2: गौरव जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ऐसी गेम्स में अब मजा आने लगा है और ये नाना पाटेकर जी की आवाज लग रही है। गुड इवनिंग, अच्छी सनसेट हो रही है फिर से।
0: क्या बात है,
3: हेलो, ये आवाज नाना पाटेकर साहब का है।
0: ओके,
3: हाय गौरव, दिस इज मुस्तफा अमान को, ये एक्टर का नाम है त्रिपाठी।
0: त्रिपाठी,
3: थैंक यू सो मच।
4: हेलो गाइस, दिस इज एमएसके फ्रॉम पाकिस्तान। आई थिंक दिस इज शक्ति कपूर।
0: शक्ति कपूर,
4: नाना पाटेकर
5: जी। गुड इवनिंग गौरव, यूसुफ अगेन हियर। हां, ये आवाज है नाना पाटेकर की। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
0: थैंक यू भाई।
6: हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, द वॉइस इज ऑफ नाना पाटेकर।
0: ओके,
7: गौरव, ये नाना पाटेकर का आवाज है।
8: गुड इवनिंग गौरव भाई, ये जो है नाना पाटेकर की आवाज है।
9: हेलो मिर्च, दिस इज असदुल्ला, इट्स नाना पाटेकर।
10: हे गौरव, ये नाना पाटेकर की आवाज थी।
11: हाय गौरव, गुड इवनिंग, एंड दिस इज नॉन अदर देन पंकज त्रिपाठी।
0: पंकज त्रिपाठी,
7: ये नाना पाटेकर, इंडियन एक्टर नाना पाटेकर।
12: मस्तमौला गौरव, ये आवाज तो नाना पाटेकर की है। थैंक यू।
13: हाय गौरव, ये नाना पाटेकर साहब का आवाज है, इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर।
0: अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। बिल्कुल सही जवाब है नाना पाटेकर, लेकिन कुछ लोगों ने बता दिया गड़बड़ नाम देकर, जैसे कि शक्ति कपूर कह दिया, पंकज त्रिपाठी तक कह दिया लोगों ने, लेकिन सच्चाई है कि दिस इज द वॉइस ऑफ नाना पाटेकर, वन एंड ओनली नाना साहब, क्योंकि गजब की एक्टिंग करते हैं और अपनी हंसी के लिए भी जाने जाते हैं। हर फिल्म में दमदार रोल कर नाम कमा लिया। तनुश्री दत्ता ने इनके नाम को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे भी बचा लिया। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
14: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
5: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। MK आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अल वक्रा, अल जनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424040। MK आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सीलेंस।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अजय देवगन, फर्ज करते हैं माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं। देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर इज केआरके, देयर इज करण जौहर एंड देयर इज काजोल। दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे।
3: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
2: Because that's the game. आपको दोनों को तो बचाने ही पड़े।
3: मुझे बचाने नहीं है। I break the rule. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ।
2: ऐसा ही हूँ मैं।
3: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं।
2: अजय देवगन being ultra savage. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। एम के आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अल वक्रा, अल जनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424240। एम के आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
5: खटखट,
6: कौन है?
5: दवे।
6: दवे कौन?
5: द वे यू लव मी। आई हाय, मर जावा।
6: खटखट, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi, it's hot.

0: बनके।
1: आज मुझे आपसे काम है, क्या आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला है? अरे पैसे की बात कर रहा हूँ भैया, क्योंकि रेट इतने जबरदस्त चल रहे, पूछो मत। राइट नाउ की बात करूं, एक कसरी रियाल के बदले इंडियन रुपीस ऑल टाइम हाई की तरफ 26 रुपए 21 पैसे मिल रहे हैं। एक कसरी रियाल आप देंगे, 26 रुपए 21 पैसे आपको झट से मिल जाएंगे। एंड ऐसे में अगर कोई दोस्त यार से उधार मिल जाए तो घर पे लखपति बनने का मौका आज ही मिल जाए। फिलहाल इन सब के बीच एक कसरी रियाल के बदले अगर हम श्रीलंकन रुपीज की बात करें 88.55, वहीं जनाब पाकिस्तान रुपीज वाहिद कतरी रियाल के बदले 77.03, 77.03 पाकिस्तान रुपीज। तपाईँको नेपाली रुपीज का रेट छ दाजु 41.86 का भल्छ रेट रे दाई। हाँ जी 41.86 रेट छ हजुर। अगर घर भेजना है तो बेस्ट टाइम छ बहिनी। अगर इसके बाद हम बात करें बंधु बांग्लादेशी टका दादा एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.66 तो 33.67। अगर घर पैसे भेजना है राइट टाइम आचे तो मस्त मौला गौरव आपके साथ, लेकिन मिर्ची पर आपके गानों की स्माइल बनी हुई है। पटोला गाना गुरु रंधावा लेकर मिर्ची पे था।

0: आ रही आ रही आ रही, हमारे अलन्नावी की टीम आ रही वर्ल्ड कप में। मिर्ची घड़ी में टाइम शाम के 6:04 के करीब।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: चले जी, बारी आ गई कि मस्तमौला गौरव बात करें अब कतर फुटबॉल एसोसिएशन के उस अनाउंसमेंट की जिसने प्रीलिमिनरी स्क्वाड बना दिया है फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप।
2: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, बता दें नॉर्थ अमेरिका में होने वाले इस जबरदस्त कप के लिए 11 जून से 19 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। यस, हम आपको बता दें गल्फ नेशन की जो प्रिपरेशन है फॉर द टूर्नामेंट वो यही नॉर्थ अमेरिका में होने वाली है 11 जून से 19 जुलाई के बीच, और उसके बाद भाई अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको में होने वाले इस वर्ल्ड कप के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। 34 प्लेयर का स्क्वाड डिसाइड हो गया और इस बार स्पेनिश हेड कोच जुलियन लोपेटेगी जो है वो हमारी टीम को वहां बेस्ट परफॉर्मेंस दिलाएंगे। वेल, इंटरनेशनल प्लेयर्स की इस लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, कैप्टन हसन अल हदूस, इसके अलावा फॉरवर्ड अकरम अफीफ, स्ट्राइकर अलमोज अली एंड डिफेंडर पेड्रो मिगुल, ये सब के सब शामिल हैं। और इनके अलावा 30 और नाम जिनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं हर कतरवासी, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं इवन एज अ रेसिडेंट हम उसका सपोर्ट करेंगे और वर्ल्ड कप में चीयर करेंगे अलनाबी यानी कि अपनी कतर की टीम को। कतर का वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू होने जा रहा है अगेंस्ट स्विट्जरलैंड इन सैन फ्रांसिस्को 13 जून को, ये कमाल होगा कनाडा के वैंकूवर में। एंड मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम कमाल करेंगे लेकिन उसके लिए अभी से तैयारी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ऐसे में मैं आपको एक मेहनत करा रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए कि कतर की टीम ने जब एएफसी एशियन कप जीता तो किस टीम को फाइनल्स में हराया था। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना है और मुझे बताना है 5000196 पर कि कतर की टीम ने जब एशियन कप जीता था एएफसी एशियन कप तो किस टीम को फाइनल्स में हराया था। 5000196 जल्दी जल्दी बताइए, अगर आपका सही जवाब हुआ तो अच्छी बात, भूल गए तो कोई बात नहीं, मेमोरी के लिए थोड़ा सा बादाम खाएंगे। 5000196 पर मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है आपके जवाबों का। वॉइस नोट में भेजना है, हाय गौरव मैं ये बोल रहा हूं इसका जवाब है फला टीम जिसको कतर ने हरा कर जीता था एएफसी एशियन कप, जितनी जल्दी याद हो बताइए वरना हम तो बता ही देंगे। मिर्ची
1: सॉल्ट, मिर्ची फ्रेश माल,
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: हीर तो आसमानी है लेकिन जमीन पे ही होते हैं रांझा, क्योंकि हीर उन्हें असली दुनिया जो दिखा देती है। अच्छा, हीर आसमानी गाना खत्म हुआ और मस्त मौला गौरव आपके बीच आ गया। अभी भी एक सवाल किया था, बस वह सवाल उसका सही जवाब मांगा था। मबरू, बहुत सारे लोगों ने जवाब भेज भी दिया है। और सवाल ये था कि AFC एशियन कप जीतते टाइम हमारे अल अन्ना भी बोले तो कतर की टीम ने किस टीम को हराया था, और इसका जवाब आया है
1: हेलो मस्त मौला गौरव, द कतर वर्सेस जॉर्डन लास्ट एशिया कप मैच। थैंक यू।
2: हाय गौरव, दिस इज ऑल्विन फ्रॉम मुंबई। जैसे आपने कहा कि कतर ने जो है फनाडीन को हराया फाइनल में।
3: हाय गुड इवनिंग, इज दलजीत। कतर डिफीटेड जॉर्डन इन एशिया कप एंड वन द कप। हेलो गौरव,
0: हाय हाय
3: कार्तिक हियर।
0: जी भाई,
3: कतर ने लास्ट टू AFC कप जीता और दोनों दोनों में, मतलब फर्स्ट टाइम जब जीता था तब जापान को हराया था, और सेकंड टाइम जब रिसेंटली जीते तब जॉर्डन को हराया था।
0: बिल्कुल सही जवाब, दोनों ही बार कतर को जे नाम की टीम को हराने का मिला। यस, पहली बार उन्होंने जापान को हराया और फिर जॉर्डन को हराकर उन्होंने एशिया कप जीता था। लेकिन अब किसको हराकर वर्ल्ड कप जीत सकते हैं यार, सपने देखने चाहिए तभी तो सच होते हैं। ऑल द बेस्ट टू टीम अन्ना भी बोले तो कतर की टीम इस बार फीफा वर्ल्ड कप में। वी नीड यू टू बी एटलीस्ट इन दी टॉप 8। 89.6 मिर्ची वन इट्स ऑल।
4: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Es cabana, pues cabana, sa cabana. Burga, burga. La vida para la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
2: जी बोल रहा हूँ
3: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
2: क्यों
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर
2: गए थे जी
3: आपने धरने पे बैठे थे आप
2: जी बैठे थे
3: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ आके लगवा लो जल्दी से
2: हम तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
3: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
2: जी गए थे जी
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
2: जी
3: आपके पड़ी लाठी कोई
2: मेरे तो नहीं पड़ी
3: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी है आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
2: सर आप नाराज क्यों
3: नहीं नाराज क्योंकि बात है बताइए हाँ बताओ
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था कहाँ पे बहुत दूर था लाठी
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई बहुत दूर
2: था सर
3: भाई तने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठियां रजिस्टर पे चढ़ाई अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
2: सर नाराज क्यों है मैं
3: नहीं
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया
3: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियां मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई यार
2: मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार नहीं नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है
2: वो
3: बहुत दूर था नाराज वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: यार बजट टीवी बन रहा है प्राइसेस देखे सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है
6: मैंने बोला था ना मी 12th का वेट कर
5: क्यों सब सस्ता हो जाएगा क्या
6: सब जगह नहीं सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th टू 18th में इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन
5: किलर ऑफर्स मैं अभी बैग पैक करता हूँ
6: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट मुमताजा डोंट मिस आउट
7: मेरे बेटे आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे
8: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी
9: आएंगे दीदी आएंगे
4: दीदी कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: Ochan di kuri, ochan di kuri.
1: हाँ जी, बिजली बिजली कैन और बिजली वाली बात तो भाई एक इंसान और करता है जिसका नाम है, हाँ जी, मस्त मौला गौरव। और देवी और सज्जनों, इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैं आपके साथ हूँ तो हर बात बताता हूँ, और उसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो दोहा मेट्रो ने की है ऑन देयर न्यू बस रूट ऑन गोल्ड लाइन। यस, और ये बस स्टेशन कौन सा है? स्पोर्ट्स सिटी अल सुदान मेट्रो स्टेशन के बीच का। यहाँ पर मैं एक बार आपसे फिर बताना चाहूंगा कि दोहा मेट्रो ने अनाउंस किया अपना न्यू रूट टू मेट्रो लिंक एंड मेट्रो एक्सप्रेस। ये कहाँ पर है? ये गोल्ड लाइन बिटवीन स्पोर्ट्स सिटी एंड अल सुदान मेट्रो स्टेशन पर है, जहाँ पर अब नई रूट में आपको मिलेगी मेट्रो लिंक सर्विस M307। ये ऑपरेट करेगी अल सुदान स्टेशन एग्जिट 1 से स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम सलवा रोड नॉर्थ की तरफ जाएगी, एंड इसी रूट पर एक और बस अपोजिट साइड चलेगी M308, एंड ये स्पोर्ट सिटी स्टेशन एग्जिट 5 से अल सुदान मेट्रो स्टेशन सलवा रोड साउथ की तरफ। तो नॉर्थ और साउथ सलवा रोड को कवर करने के लिए M307 308 एक नई बस, और हमारे सफर को बनाएगी आसान। एंड कतर में अब कहीं भी जाना और भी होगा आसान, एंड थैंक यू टू दोहा मेट्रो कतर रेल, क्योंकि ये 6 रियाल में दुनिया का सबसे जबरदस्त, सबसे अफोर्डेबल, चीपेस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। 89.6 मिर्ची 1, थैंक यू कतर, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: कल

फिशिंग के शौकीनों, आपकी भी आंखों में थोड़ा आंसू आएगा क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट इवेंट थोड़े दिन बाद आएगा। यस, मस्त मौला गौरव आपको यहाँ बताना चाहता है कि ओल्ड दोहा पोर्ट पर जो फिशिंग कंपटीशन की बातें चल रही थी वो फिलहाल के लिए थोड़े दिनों के लिए टल गई हैं। यस, ओल्ड दोहा पोर्ट पर होने वाला फिशिंग कंपटीशन अभी फिलहाल के लिए कुछ टाइम टाला गया है। अब उसकी नई डेट्स क्या होंगी, कैसे होगा, इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, ओल्ड दोहा पोर्ट पर होने वाला फिशिंग कॉम्पिटिशन फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गया है। इसकी पहली डेट थी 11 मई 2026, हालांकि उस दिन अनाउंस किया गया था कि 13 से 16 मई होगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये रोक दिया गया है। ओल्ड दोहा पोर्ट पर होने वाला फिशिंग कंपटीशन, जो कि कतर का सबसे बड़ा फिशिंग इवेंट है, वो कंट्री के फिशिंग ट्रेडिशन को, कल्चर को जिंदा रखने के लिए बना रहता है। लोकल फिशिंग कम्युनिटीज का हिस्सा बनती है, हजारों पार्टिसिपेंट आते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसे टाल दिया गया है। न्यू डेट विल बी अनाउंस सून, लेकिन तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और मच्छी मारने की प्रैक्टिस मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कार्स गिफ्ट मिलती है, याद रखिएगा। न्यू डेट जैसे ही आएंगी, मैं स्मॉलर गौरव आप तक जरूर पहुंचाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगला गाना स्वीटी का ड्रामा आपके पास लेकर आगे आइए, मिलके देखते हैं और सुनते हैं मिर्ची थॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
2: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
3: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
2: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
1: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
4: Khat khat.
5: Kaun hai?
4: Ishant.
5: Ishant kaun?
4: Ishant Gadadhari Bhim, Ishant.
5: Khat khat, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
7: Only on Mirchi. It's hot.
4: Khat khat.
5: Kaun hai?
4: Ishant.
5: Ishant kaun?
4: Ishant Gadadhari Bhim, Ishant.
5: Khat khat, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: Mirchi Helpline?
1: Mirchi Helpline, what is the question?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 6:51 पर बंजारे बैरन गाना सुना के आगे बढ़ गए और आपके साथ आ गए। Yes, sir, मस्त मौला गौरव आपके साथ है। देवी और सजनों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपके कानों तक पहुंचाते इस घंटे में। कुछ बड़ी चीजें जैसे कतर एनर्जी का वो MOU जो कि उसने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए ऑफशोर सीरिया में कर लिया है। यस, कतर एनर्जी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टोटल एनर्जीज, कोनोको, फिलिप्स एंड द सीरियन पेट्रोलियम कंपनी के साथ मिलकर अब कॉपरेशन ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करेगा सीरियन अरब रिपब्लिक के ऑफशोर में। एंड मुझे लगता है आने वाले टाइम में जॉब जनरेशन सीरिया की बात करें या फिर सीरिया में तरक्की की बात करें वो और रास्ता खुलता जा रहा है जब कतर एनर्जी का ये MOU साइन हो गया है। तो चलिए जी, ऑल द बेस्ट। और ये नई फील्ड बहुत सारी खुशियां और अच्छाइयां लेकर आए। मस्मौला गौरव फिलहाल आगे बढ़ता है शाम के 7:03
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एंड आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी बताना चाहूंगा यहाँ पर कि डस्ट स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग विंड की वार्निंग है क्योंकि भैया अल शार्टन स्टार जो है वो अब शुरुआत करने जा रहा है हमारे कतर में गर्मी की। तो अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा कल से। मिर्ची थॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Milci, burga. Burga. हेलो,
2: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज।
1: गुड इवनिंग
2: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से।
1: ओके
2: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे। राइट फाइन। तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे। राइट सर, मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा वेट सर वेट,
1: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है
2: सर? यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा। दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
1: डर जाएगी।
2: गुड सर, वेरी गुड सर।
1: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
2: सर, आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान।
1: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
2: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं। पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले।
1: पूछो यार।
2: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
1: पूरे 100।
2: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट। सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर, पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
1: जेल में जाना पड़ेगा।
2: ग्रेट सर, ग्रेट। रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
1: समझा नहीं मैं।
2: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा। मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था। जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अगला स्टेशन बहरीन, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। अगला स्टेशन कतर, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। 89.6 मिर्ची गन पर अनाउंसमेंट ऐसी तो होगी जब जीसीसी का अपना रेलवे नेटवर्क होगा। यस, डायरेक्टर जनरल ऑफ द जीसीसी रेलवेज अथॉरिटी मोहम्मद अली शबरामी, उन्होंने ये बताया है कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो जीसीसी रेलवे लिंकेज प्रोजेक्ट जो कि लगभग 1700 किलोमीटर का है, उसका 50% काम पूरा हो गया है। यस, डेट यही कहा जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर 2030 से ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी देश हैं वो अब आने वाले टाइम में एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो कार्गो की बात की जाए या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की। जबरदस्त तरीके से सोशल टाइज भी बढ़ेगा और सारे जीसीसी सिटीजन्स एंड रेसिडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इसी पैसेंजर ट्रेन का इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है और अगर 2030 तक ये पूरा होता है तो हमारे आपके पास भी मौका आएगा जब छुट्टियां आया करेंगी ईद अल अधा की, ईद उल फितर की, तो हम भी यही क्या करेंगे, अरे इस बार ट्रेन पकड़ के निकल लेते हैं ओमान, इस बार ट्रेन पकड़ के निकल लेते हैं बहरीन, हैं जी, ऐसे ही घूमेंगे हम सब सऊदी अरेबिया से लेके यूएई तक। वैसे फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूं, इंतजार कीजिए जब वो आवाज हमारे कानों में भी आएगी, वहद गर्मा गर्म करक हबीबी गर्मा गर्म करक, या फिर शौरमा फलाफल जी फॉर्म शौरमा फलाफल, हां जी, जैसे हमारे वहां समोसा और चाय बिकता है यहां फिलहाल भी मिलेगा ट्रेन में। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
4: Qatar का number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

छोटे बच्चों के मम्मी पापा, आपके लिए ये अच्छा काम हो गया। वैसे वो सारे बच्चे जो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन अब उनके पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि उन्हें एक प्री किंडरगार्टन में डाल देते हैं, तो उनके लिए अब एक अच्छा काम हो रहा है। यस, कतर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्री किंडरगार्टन सर्विसेज को और एक्सपेंड करने के अनाउंसमेंट कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अर्ली एजुकेशन का बेनिफिट जो है वो मिल पाए। अब पेरेंट्स के लिए आप आराम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और इजिली एक्सेसिबल बना पाएंगे एंड आराम से अपडेट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए, जिसमें आपके लिए टेंशन कम हो जाएगी, कन्वीनियंस ज्यादा हो जाएगा, मोबाइल पर ही आपका ऑलमोस्ट ज्यादातर काम हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अब पेरेंट्स के अंदर खुद अवेयरनेस आ रही है कि यार उनको अपने बच्चों को ना अर्ली एजुकेशन सिस्टम से रूबरू कराना है, और इसीलिए जो लास्ट ईयर सिर्फ 4 किंडरगार्टन से शुरू हुआ था ना, वो इस साल और एक्सपेंड हो रहा है और नए स्कूल्स भी इसमें ऐड ऑन होने जा रहे हैं। और क्लियर फोकस है हमारे कतर का भी कि फ्यूचर जनरेशन की जो स्ट्रांग फाउंडेशन है वो इन्हीं प्री किंडरगार्टन स्कूल से बनती है, उसे मजबूत करना है। और विश्वास कीजिए, जिस तरह से कतर अपने फ्यूचर के लिए इस एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बहुत ही मजबूत बना पाएंगे और पढ़ाई के ही सारे दुनिया को आगे बढ़ाते रहेंगे और कतर का नाम रोशन करते रहेंगे। इस उम्मीद में कि अगर आप छोटे बच्चे के पेरेंट हैं और प्री किंडरगार्टन के लिए अपने बच्चे के लिए कुछ खोज रहे हैं, तो ये मौका अब आपके लिए लेकर आ गया है। कतर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट
6: पुरेश
5: बनता
6: बनता हूँ।
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खट खट हू दैट
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

अरे आपका यार हूँ और आपकी बड़ी परवाह भी करता हूँ, और इसीलिए बता रहा हूँ कि कतर में अब शुरुआत हो गई है थुरियत अलखेस की, यानी कि फर्स्ट स्टार ऑफ अल थुया, जो कि स्टार्स आता है और ये जनरली कतर में गर्मी को बढ़ाने आता है। कतर म्यूचुअल डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अल शर्तेन स्टार जो है वो अब धीरे धीरे घट रहा है एंड शुरुआत होने वाली है अल थुराया की, जो कि गर्मी लेकर आएगा। नॉर्थ वेस्टर्ली इवेंट्स वैसे ही हमारे कतर में बहुत ही स्ट्रांग तरीके से चल रही है, लेकिन इस वीकेंड ये और ज्यादा बढ़ेगी डस्ट स्टॉर्म के साथ, टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ जाएगा एंड ड्यूरिंग डे टाइम आप ये पाएंगे कि टेम्परेचर काफी ऊपर जा रहा है, लेकिन लू के थपेड़े भी आपको फील होंगे, इसलिए गाड़ी आराम ना लेकर कहीं जाइएगा एंड कोशिश यही कीजिएगा कि जब भी बाहर निकले सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन हो आपके साथ, चश्मे लगे हो, और अपने चेहरे को बचाने के लिए आप प्यारा सा कोई कॉटन का कपड़ा भी रख सकते हैं। इस उम्मीद में कि गर्मी में आप अपना ख्याल रखेंगे, पानी भरपूर पियेंगे एंड कोशिश करेंगे दिन के टाइम कम से कम बाहर सन के सामने एक्सपोज हो। मस्मोला गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से लेकर शाम शानदार ओलियन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट टड़वा हबीबी, मस्सलाम है।

0: एक्सपोज्ड,
1: हम बाहर सन के सामने एक्सपोज हो। मस्मोलो गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से लेकर शाम शानदार। ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट। टड़बड़ा हबीबी, मस्सलाम है।

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: बज चुके हैं रात के 8. पुरानी जीन्स सुन रहे हैं आप मिर्ची पे.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, आपका इस्तकबाल करते हुए। बहुत तरीके के प्रेम होते हैं। प्रेम अलग अलग चीजों पे आ सकता है, लेकिन देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में बसती है। लाल चंद फलक साहब का शेर याद आता है मुझे यहाँ पे, कहते हैं कि दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। वाह जी वाह, क्या तरीका है अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करने का कि दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल
2: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर आया है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
0: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर एक ऐसे शख्स से जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने मुल्क को इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला जंग की वकालत की और महात्मा गांधी को स्वदेशी आंदोलन की राह सुझाई। मैं बात कर रहा हूं हसरत मोहानी साहब की। हसरत मोहानी साहब का जन्म उन्नाव में हुआ उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्यु लखनऊ में हुई। और उनकी एक गजल जो आपको बड़ी पसंद है मैं जानता हूं वो है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। हाँ जी, ये गजल हमारे भारतीय हसरत मोहानी साहब ने ही लिखी। बहरहाल आपको सुनाए उनका हमारा एक बड़ा पसंदीदा शेर। कहते हैं कि तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, कोई और क्या उठा देता, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। आए हाय, जब जिसको प्यार करो वही जाने को कह दे, उस महफिल में कभी मत बैठना दोस्त, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। बहरहाल गजलों नगमों का सिलसिला रहेगा जारी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपके ताशी है आपके साथ। It's hot.

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
4: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा,
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और कभी कभी मेरे ख्याल से रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए ये ख्याल आता है कि जिंदगी में किया तो आखिर किया क्या है ना। वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, फिर कहीं वीकेंड में कहीं घूमने चले जाना हल्का सा, कहीं छुट्टी मना लेना, फिर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बड़ा बेहतरीन शेर है, कहते हैं कि हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। कारे नुमाया मतलब ऐसा क्या उखाड़ लिया हमने, क्या बेहतरीन काम कर दिया हमने, क्या ऐसा मेजर काम कर दिया। हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। और कभी कभी इसी चक्र से कि बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए, निकलने का मन सा करता है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। इट्स

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: खट खट
2: अखबार
1: अखबार हूँ।
2: अरे अखबार बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
1: खट खट हू दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और जीवन के चंद सुखों में से ये भी एक सुख है जो आपके साथ बांटा जा सकता है।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और हाँ जी, महफिल में अब वक्त है कि आपका ताशी करे आपके नजर। आज का पहला ताशी अनप्लग्ड और ये शफकत अमानत अली साहब की आवाज में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है वो है इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड इट्स कॉल्ड आंखों के सागर।

बगैर। पता नहीं आपने बारीक डिटेल नोटिस करी हो कि ना करी हो, आंखों के सागर हैं लेकिन होठों के सागर हैं। सागर जो वर्ड है जिसमें ग पे नुक्ता लगा हुआ है, सागर लफ्ज का मतलब होता है प्याला। एग्जैक्टली, तो कितनी खूबसूरती से लिखा गया है कि आंखों के सागर होठों के सागर। नाउ यू नो समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग दैट सम ऑफ योर फ्रेंड्स आई गेस मे नॉट, है ना। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपके ताशी आपके साथ। क्यों बोला इसे, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: 89.6, 89.6
2: It's hot.
3: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

हाय हाय हाय हाय, क्या गाना है। और ये गाना ना मैंने आपकी तरफ से खुद को डेडिकेट कर दिया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो पिछले 2 हफ्ते से मैं ये पुरानी जीन्स शो होस्ट नहीं कर रही थी, और आप में से बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया एंड आई वाज सो टच्ड, आई वाज ओवरवेल्म्ड कि आपने मेरा हाल चाल पूछा कि मैं शो पे क्यों नहीं आ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दो स्वीट मैसेजेस। एंड अगर आप मुझे गाने के फॉर्म में पूछें कि मुझे तुमसे हैं कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, तो मैं कहूँगी कि वेकेशन की, बहुत मज़ा किया। और अब गाने की बात छिड़ ही गई है तो गाना सुन लेते हैं, राम लखन फिल्म का पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो, कुछ लोगों को माउंटेन्स पसंद होते हैं, कुछ को बीचेस पसंद होते हैं, कुछ को दोनों पसंद होते हैं, लेकिन बात अगर घूमने की आती है तो दोनों जगह घूमने के पैसे भी सेव होने चाहिए पूरे साल में। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो एक ही वेकेशन के पैसे सेव कर पाते हैं, तो एक जगह जाने की बात हो तो फिर मैं पहाड़ों पे जाती हूँ। और क्योंकि मैं मई के महीने में घूमती हूँ, मई मेरा बर्थडे मंथ होता है, तो फिर पहाड़ों में जाना ही पसंद करती हूँ। एक्चुअली बीचेस पे जाना मैं इसीलिए भी नहीं प्रेफर करती थी कुछ टाइम तक, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता था यार, बचपन से ही। मतलब मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी, बड़ी हिम्मत करके मैंने 2 साल पहले स्विमिंग ऐसे सीख ली, मतलब काम चला उसी। तो एक दो बीच वेकेशन मैंने की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रेफरेंस पूछी जाए और पैसे वाला मामला भी कंसिडर किया जाए तो यस, माउंटेन्स फॉर श्योर। और इस साल मैं कौन से पहाड़ों में घूम कर आई हूँ मैं आपसे शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये गाना शेयर कर रही हूँ जिसमें कितनी सुंदर पहाड़ों वाली फील है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: खट खट,
2: कौन है?
1: अज्जू।
2: अज्जू कौन?
1: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
2: खट खट, who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu.

0: मैं अपने निकम्मे दोस्तों पर डिपेंडेंट थी, अब मैं काफी इंडिपेंडेंट हूँ।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मैं ट्रैवल प्लान्स की बात कर रही हूँ। एक टाइम था जब मुझे ऐसे लगता था कि ट्रैवल तो भाई फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, अकेले सोलो कैसे ट्रैवल करते हैं लोग, और आज मैं वही लोग बन गई हूँ। कुछ लोग सोलो ट्रैवल बाय चॉइस करते हैं और कुछ बाय सर्कमस्टांसेस करते हैं। तो मैंने बाय सर्कमस्टांसेस सोलो ट्रैवल करना शुरू किया और अब ये मेरी चॉइस बन गया है। मतलब कुछ 5-6 साल हो गए मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। और एक्चुअली पता है, जब आप सोलो ट्रैवल करते हो वो सोलो ट्रैवल रहता नहीं है, क्योंकि आप इतने नए इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हो, वो बहुत ही ऑसम हो जाता है। और हर साल अराउंड माय बर्थडे मई के महीने में मैं घूमने जाती हूँ पहाड़ों में। इस बार मैं कहाँ गई, क्या किया, बताऊंगी। फिलहाल ये गाना, जो मुझे ऐसे लगता है सोलो फीमेल ट्रैवलर्स का सॉर्ट ऑफ एंथम, इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
2: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि कैसे बाय सर्कमस्टांसेस मैं एक सोलो ट्रैवलर बन गई और अब मैं बाय चॉइस सोलो ट्रैवलर हूँ। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, बल्कि अब मैं वो दोस्त बन गई हूँ कि कोई दोस्तों का ग्रुप प्लान भी बन रहा होता है ना ट्रैवल का, तो मैं वो प्लान खराब करती हूँ बोल के कि मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे अकेले ट्रैवल करना होता है। और एक्चुअली अकेले कहाँ होता है, यू नो, जब आप सोलो ट्रैवल करते हो आप इतने लोगों से मिलते हो कि कई बार उनके साथ ग्रुप ट्रैवल ही हो जाता है, पर वो दोस्तों के साथ वाले ग्रुप ट्रैवल जैसा नहीं होता है क्योंकि वो बिल्कुल ही नए लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हो। उनकी जिंदगी के बारे में आपको पता चलता है, लाइफ को लेके नए पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं। मैं तो खास करके इसीलिए कोशिश करती हूँ इन दिस मंथ ऑफ मे, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ होता है, मुझे लगता है मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए रियलाइजेशंस होंगे, विजडम मिलेगी जो साल भर में ख़त्म हो जाती है, फिर मैं अगले साल रिचार्ज करने या उसे रिन्यू करने चले जाती हूँ। और वैसे मैं ऐसे काफ़ी जगह निपटा चुकी हूँ, उत्तराखंड में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर वगैरह उधर सब। इस साल मैं हिमाचल में गई थी टू अ प्लेस कॉल्ड धर्मकोट, करती हूँ उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। राइट है, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

कई बार हम लाइफ में बहुत स्टक हो जाते हैं, नहीं? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा लगता है फंस गए, वही सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, वही विशियस साइकिल चल रहा होता है लाइफ का। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी चल रहा था कुछ टाइम से। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक धर्मकोट नाम की जगह है, वहां पे काफी सारे योगा कोर्सेज हैं। तो उसने मुझे एक पर्टिकुलर योगा कोर्स सजेस्ट किया कि तू ये जाके कर, यू माइट फील बेटर। तो मैंने ये कोर्स किया 9 दिन का। मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट वाज एक्सपेक्टेड, वो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बट आई लर्न समथिंग न्यू। ऑल्सो ये जो जगह है ना धर्मकोट, इसकी क्या अमेजिंग वाइब्स हैं, करती हूँ इसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज।
3: गुड इवनिंग
4: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से।
3: ओके
4: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे। राइट फाइन। तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास 2 मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे। राइट सर। मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
3: टू टू जा फोर।
4: वेट सर, वेट।
3: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
4: सर यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा। दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
3: डर जाएगी।
4: गुड सर, वेरी गुड सर।
3: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
4: सर, आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान।
3: नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
4: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं, पेरेंट्स को अकल कितनी है। और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले।
3: पूछो यार।
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
3: पूरे 100।
4: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट। सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर, पोषण मा भाई पोषण पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
3: जेल में जाना पड़ेगा।
4: ग्रेट सर, ग्रेट। रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
3: समझा नहीं मैं
4: बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा। मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था। जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आओ वापस चले हिमाचल के धर्मकोट। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई हर साल अपने बर्थडे मंथ में, मई मंथ में, मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल करती हूँ और इस साल मैं गई थी हिमाचल के कांगड़ा जिले के धर्मकोट। एक्चुअली गई तो मैं एक 9 दिन का योगा कोर्स करने थी जो मेरे लिए 18 दिन का साबित हुआ क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आई लर्न समथिंग न्यू। एंड अदरवाइज इस जगह की बात करें अगर धर्मकोट की, छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन जहाँ की ना बहुत हीलिंग वाइब्स हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली जगह हम बोल सकते हैं। एक तो ये योगा सेंटर्स है वहाँ पे, बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है, बहुत स्पिरिचुअल चीजें होती हैं ऐसी होलिस्टिक हीलिंग वाली, सूफी इवनिंग्स होती हैं, कवालियाँ होती हैं, कीर्तन होते हैं। तो मेरी जो लो वाली फ्रीक्वेंसीज थी वो मीडियम तक तो पहुंच गई। तो आप भी कभी लाइफ में ऐसे स्टक हो या आपको ऐसी किसी जगह जाना हो तो दिस इज द प्लेस। ऑल्सो मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिली, खास करके फॉरेनर्स से, जिनके बारे में हम करेंगे बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: आते जाते।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तो इस साल मैं अपने ईयरली बर्थडे सोलो ट्रिप पर गई थी हिमाचल के धर्मकोट। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ट्रिप पे मैंने सिर्फ मजा मस्ती नहीं, काफी मेहनत भी की। मैंने 9 दिन का एक योगा कोर्स किया जहाँ पर मैं बहुत सारे फॉरेनर्स से मिली। देखो, लोग तो बहुत मिलते हैं जब आप ट्रैवल करते हो, लेकिन कुछ लोग आपको खास तौर पे याद रह जाते हैं। तो ऐसा एक बंदा था, मतेओ, इटालियन गाय, ऑलवेज स्माइलिंग। मतलब एक होता है ना, किसी की स्माइल ऐसे दिल से आती है, जेन्युइन होती है, बिल्कुल कभी कोई प्रिटेंड नहीं करते वो लोग, वो वैसा था। और उसको देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ ही जाती थी, क्योंकि वो ही हमेशा स्माइल कर रहा होता था। उसके साथ एक स्पैनिश बंदा भी रहता था, वो इतना स्माइल नहीं करता था, लेकिन दोनों बहुत गुड लुकिंग थे। तो मैंने उनको सुंदर लड़के ऐसे बोलना सिखा दिया था कि तुम सुंदर लड़के हो, पंजाबी में भी सिखा दिया था, सोने मुंडे। और बदले में जब वो मुस्कुरा के मुझे चाओ बेलिसिमा बोलता था ना, यानी कि हाय ब्यूटीफुल बोलता था ना, तो आय हाय हाय हाय ओए होए होए होए हो जाता था। इसी बात पे मतेओ के नाम, वो इटालियन बंदे के नाम, ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: आ, आ, आ, ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: जरा ओढ़ो अरे मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान धड़कपन छोड़ो.
1: One of the most beautiful things about traveling is meeting new people. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. और इस साल अपने ईयरली बर्थडे सोलो ट्रिप पर मैं गई हिमाचल के धर्मकोट, जहाँ पर मैंने काफी मेहनत भी की क्योंकि मैंने एक योगा कोर्स किया. एंड इस कोर्स में आई मेट दिस गर्ल कॉल्ड एलिसा, जिसकी लाफ्टर इतनी इन्फेक्शियस, कंटेजियस, क्या बोलेंगे, ऐसी थी ना, वो ऐसे ऐसे करके हंसती थी और आप उसको हंसता सुनो आपकी अपने आप हंसी निकल जाती थी. इतनी प्यारी बंदी वो बिलोंग करती है सिएटल से, जिस जगह पे मैं कभी गई नहीं, लेकिन आई हैव दिस स्पेशल अटैचमेंट टू दिस सिटी बिकॉज 90s से स्लीपलेस इन सिएटल मेरी मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है. आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है प्लीज देखो यार, इतनी प्यारी फिल्म है ना. ये पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन जो है वो मिलके भी नहीं मिलते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब मिलते हैं तो एक दूसरे के हो जाते हैं. आपने अगर मूवी देखी है तो आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ, नहीं देखी है तो देखो स्लीपलेस इन सिएटल. फिलहाल के लिए ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं.

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

मैं और मेरी ट्रैवल स्टोरीज। हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इस साल अपने बर्थडे वेकेशन पर मैं गई हिमाचल के धर्मकोट और वहाँ की स्टोरीज आपसे आज शेयर कर रही हूँ। इस ट्रिप पे मैंने एक योगा कोर्स भी किया एंड वहाँ पे मैं बहुत अमेजिंग लोगों से मिली। एंड वन सच पर्सन वॉज मार्टिन, अमेरिकन गाय, मिड 60s में डॉक्टर, और योगा कोर्स तो वो पूरे एंथुजियाज्म के साथ कर ही रहा था। अदरवाइज भी वो इतना एनर्जेटिक था भाई। हमारा ना योगा कोर्स बहुत टायरिंग था जो क्लासेस होती थी, लेकिन ये बंदा थकता नहीं था। वो क्लासेस के बाद भी हमारी तो टाइम टाइम फिस हो जाती थी। ये जाके एक्सप्लोर करता रहता था इतने कैफेज, कोई और वर्कशॉप हो रही है, कोई और क्लास हो रही है, वहां पे भी जाता था। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ही वॉज डूइंग, वो सीख रहा था इंडियन क्लासिकल डांस, ओडिसी डांस, क्योंकि 2 महीने बाद उसकी डॉटर की शादी है और उस शादी में वो ये इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्म करेगा। कि कितनी खूबसूरत बात होती है ना, आप किसी के कल्चर से कुछ सीख रहे हो, वो आपके कल्चर से कुछ सीख रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स एवर। तो मार्टिन ने तो मुझे बहुत इंस्पायर किया। और ये शादी के संगीत टाइप का गाना हम सबको खुश करने वाला है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, मोटर से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी
4: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
3: ठीक है सर,
4: 5 सेकंड जल्दी।
5: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो,
4: प्लीज जल्दी बता दो।
3: हेलो
4: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
6: हाँ जी सर।
4: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
6: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
4: एक सेकंड
6: सर, हैंड ब्रेक खींच दो सर।
4: एक सेकंड रुकिए
6: सर, साइड में, लेफ्ट साइड में।
4: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
6: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
4: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए, ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
6: हाँ जी।
4: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
6: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
4: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
6: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
4: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है, कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
6: हाँ जी।
4: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
6: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
4: क्या करूँ?
6: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
4: एक सेकंड रुकिए।
6: क्या हो गया?
4: गाड़ी ठुक गई।
3: Yes.
5: मैडम, क्या नाम है आपका?
3: दिव्या।
5: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
3: Oh, कुकड़ू।
7: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.
2: Yeah,
0: 89.6, 89.6. It's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, हर बार मैं सोचती हूँ इस बारे में बात ना करूँ, लेकिन इन चीजों के बारे में अगर बात न की जाए तो फिर वो सही बात नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कचरा फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, सिविक सेंस जिनमें नहीं है, जैसे चिप्स चॉकलेट खाया, रैपर पैकेट वहीं फेंक दिया, पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, बॉटल वहीं छोड़ दिया। कितना टाइम और एफर्ट लगता है कि आप उन चीजों को अपने बैग में रख लें, अपनी गाड़ी में रख लें, अपने पास रख लें, और फिर जहां भी आपको डस्टबिन दिखे वहां फेंक दें। कितना ही टाइम एफर्ट लग जाता है। उसके बाद साउंड पोल्यूशन, बड़े बड़े स्पीकर्स लेके लोग टूरिस्ट प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे घूमते हैं, ऊंची ऊंची आवाज करके गाने सुनते हैं, खा पी के हुल्लड़ करना, आधी आधी रात को चिल्ला रहे हैं। भाई वो जगहें जो हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, पहाड़ों की खास करके मैं बात कर रही हूँ, वो बहते पानी की, साए साए करके जो हवाएं चलती हैं उसकी, पक्षियों के चहचहाने की, वो आवाजें सुनने की जगह है। शोर शराबा हुल्लड़ नहीं। आई होप लोग ये बात समझें, इन पे अमल करें। फिलहाल आप एक काम करें, ये गाना सुनें पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार, तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
4: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जिंदगी के सफर में कई बार सफरिंग इतनी बढ़ जाती है कि ट्रैवल वाला सफर करना पड़ता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ट्रैवलिंग इज थेरेपी, इट्स मेडिसिन। और मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मैं तो एक टाइम पे ऐसी होती थी, मुझे लगता था भाई ट्रैवल तो फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, ऐसे सोलो कैसे ट्रैवल करते हैं। लेकिन फिर जब सर्कमस्टांसेस की वजह से अकेले ट्रैवल करना शुरू किया, उसके बाद से तो अकेले ही ट्रैवल करती हूँ। कई सालों से काफी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। हाँ, साल भर पैसा सेव करना पड़ता है, काफी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन दैट ट्रैवल इज वर्थ इट। और अकेले ट्रैवल करना तो आपको इतना वाइजर बना देता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ब्रेव बनाता है। कितनी सारी चीजें आप अकेले हैंडल करते हो, फेस करते हो, और सबसे खूबसूरत बात, इतने सारे नए लोगों से मिलते हो, उनकी लाइफ के बारे में आपको पता चलता है, उनके कल्चर के बारे में। कोई अलग स्टेट के किसी बंदे से आप मिल रहे हो, किसी दूसरी कंट्री के बंदे से आप मिल रहे हो, या फॉर दैट मैटर कोई दूसरी कंट्री आप घूमने गए हो, और कई बार उनसे मिलते मिलते खुद से भी मिल जाते हो। सो कीप ट्रैवलिंग, इसे आप ट्रैवल करने का साइन समझ लो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
2: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
3: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
2: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
1: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Zaheer.
5: Zaheer. Zaheer who?
4: Zaheer si baat hai. Main hi hu, aur koi nahi.
5: Cut, cut. Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
6: Mirchi stories. Stories.
7: Bas. 24 घंटे ही रहेंगी
8: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
9: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची, it's hot.
10: 89.6
0: मिर्ची। Purani Jeans with Charu, only on

पहाड़ों में जब हम घूमने जाते हैं तो हमें मजा आता है क्योंकि नज़ारे अच्छे होते हैं, मौसम अच्छा होता है और एक और चीज होती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी पुराने टाइम में चले गए हैं, जैसे वक्त वहां पे ठहरा हुआ है। लाइफ की पेस स्लो हो जाती है, लोग जल्दी उठते हैं सुबह, आराम से अपने काम निपटाते हैं और दिन जल्दी निपटाते हैं, टाइम से सो जाते हैं। वहां की पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कैब्स वगैरह में भी अक्सर आपको 90s के गाने या पुराने गाने सुनने को ज्यादा मिलते हैं। नदी के बहने की आवाज, पक्षियों का चहचहाना, हवा चलने की आवाज, ये सारी चीजें आपको महसूस होती हैं क्योंकि स्लो डाउन हो जाता है, विच इज सो हीलिंग। तो लाइफ में जितनी भी हीलिंग चीजें हैं, फिर चाहे वो ट्रैवल करना हो पहाड़ों में या फिर अपने लव्ड वंस की हीलिंग हग्स हो, वो सब आपको मिलती रहे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।